जय माता की। नवरात्रि के पांचवे दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मोर भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। वहीं मान्यता ये भी है कि इनकी पूजा करने से संतान योग की प्राप्ति होती है।

जय माता की। आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के पांचवें स्वरूप यानी स्कंद माता की। नवरात्रि के पांचवें दिन सबसे पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें, फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप एवं दीपक से माँ की आरती उतारें। आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें और आप भी ग्रहण करें। स्कंद माता को सफेद रंग पसंद है, इसलिए आप सफेद रंग के कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ निरोगी रहने का आशीर्वाद देती है। अभी हम बात कर रहे थे पूजा विधि के बारे में। वक्त है एक भजन सुनने का।

एक बार फिर से आप सबका स्वागत, आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात कर रहे हैं माँ स्कंद माता की। आज माता रानी का पांचवा दिन है। एक कथा सामने आती है, कार्तिकेय को देवताओं का कुमार सेनापति भी कहा जाता है। कार्तिकेय को पुराणों में सनत कुमार, स्कंद कुमार आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ अपने इस रूप में शेर पर सवार होकर अत्याचारी दानवों का संहार करती हैं। पर्वतराज की बेटी होने के कारण इन्हें पार्वती भी कहते हैं और भगवान शिव की पत्नी होने के कारण इनका नाम एक माहेश्वरी भी है। इनके गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी भी कहा जाता है। माँ को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है, जो अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करती हैं। माँ कमल के पुष्प पर विराजित अभय मुद्रा में होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी और विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहा जाता है।

जय माता की। आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पांचवें दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की आज हम चर्चा कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार माँ स्कंद माता भक्तों पर अपने पुत्र के समान प्रेम अथवा स्नेह लुटाती हैं। मान्यता है कि माँ की उपासना करने से नकारात्मक शक्ति दूर होती है और मन वांछित फल मिलने के साथ ही कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता की विधि विधान से आराधना करने से साधक के लिए मोक्ष का रास्ता भी सुलभ हो जाता है। ये भगवान स्कंद की माता हैं, इसी कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है।

जय माता की। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज नवरात्रि के पांचवें दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। माँ एक शेर पर विराजमान है और उनके चार हाथ हैं। माँ की गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में बैठे हुए, माँ के दाहिनी भुजा में भगवान स्कंद हैं, दाहिनी ओर की नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है, बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में भी कमल का पुष्प है। ये स्कंद माता का स्वरूप है। स्कंद माता की पूजा अर्चना करने की विधि, सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें, माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं, माँ को कुमकुम रोली पुष्प फल मिठाई पान का पत्ता लौंग इलायची श्रृंगार का सामान अर्पित करें, माँ के सामने धूप दीप जलाएं और आरती करें।

एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। इस दिन केले की खीर, केले से बनी मिठाई या केले का हलवा भी माँ को भोग के रूप में अर्पित करने से माँ के प्रसन्न होने की मान्यता है। इसके अलावा माँ को फल, मिठाई, मिश्री, खीर का भोग लगाया जाता है और आज के दिन का शुभ रंग पीला और सफेद माना गया है। आप श्वेत अथवा पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं और माँ को कमल का पुष्प अति प्रिय है और आप कमल के पुष्प पर विराजमान होने के कारण माँ को पद्मासन भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ स्कंद माता को गुलाब और गुड़हल के लाल पुष्प भी अर्पित किए जा सकते हैं। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं लेता हूँ आपसे अनुमति। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माता की।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: जय माता की। नवरात्रि के पांचवें दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। जय माता की।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं नाचीज हरदिल अजीज गगन। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें। चलिए एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ और जाहिर सी बात है कि उसके रिगार्डिंग आप जानना समझना चाहते हैं कि जब भी आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले सामना होता है या कॉलिंग होती है एचआर की आपके लिए कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और आपकी क्या डिमांड है, यानी कि रुपये पैसों की क्या डिमांड है। इसी से रिगार्डिंग आज मेरे साथ एक शख्सियत जुड़ रही है जो हमारे साथ शारदा विश्वविद्यालय के डायरेक्टर एंड एचआर शारदा ग्रुप के हेड है एचआर डिपार्टमेंट में, मिस्टर गौरव डिमरी जी। इनके बारे में थोड़ा सा मैं और आपको बताना चाहूंगा कि सर ने आर्मी में देश की सेवा की है और लगभग 20 वर्षों का अनुभव है और उसके बाद इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ, ये सारी बातें करेंगे। तो गौरव सर, आपका सुनो श्रद्धा 90.8 एफएम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू गगन जी, रियली एन ऑनर टू बी ऑन द प्लेटफॉर्म।
0: सर ये हमारा सम्मान है कि आपने समय निकालकर आप हमारे बीच आए। तो निश्चित तौर पर हमारे जो श्रोता हैं, जो लिसनर्स हैं, उनको जरूर फायदा मिलेगा कि एचआर का जो फील्ड है किस तरीके का फील्ड है, यहाँ फ्यूचर क्या है, और पहले तो आप इसके बारे में बताइए।
1: जहां तक एचआर की बात है, दिस इज एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज। सो टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, मशीनरी कहीं की कहीं अपग्रेड हो जाए, इवन इफ मैन हैज टू रीच द अदर प्लैनेट्स इन द गैलेक्सी, स्टिल दैट मैन हैज टू बी मैनेज्ड। सो फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सक्सीड एनी फील्ड, मोर इम्पॉर्टेंट इज कि जो लोग वहां उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, उनका वेलबींग, उनकी करियर ग्रोथ, उनका डे टू डे रूटीन, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो एक बहुत ही एक ऐसी फील्ड है ह्यूमन रिसोर्सेज जहां अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड एंड एबिलिटी एंड टू कंट्रीब्यूट मैटर्स एंड यू आर एबल टू रियली इन्फ्लुएंस द माइंड्स एंड लाइव्स ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बोथ ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स एंड इवन बियॉन्ड ऑफिस आवर्स। सो दैट अपॉर्चुनिटी एंड ऑल एनकम्पासिंग रोल ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड प्रोवाइड करती है।
0: जी जी गौरव सर, आप मुझे थोड़ा ये डिटेल में ये भी बताइए कि जब आप किसी को रिक्रूट कर रहे होते हैं तो किन किन खास बातों को आप ध्यान में रखते हैं ताकि जो हमारे लिसनर्स हैं उस चीज को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, अपने आप को तैयार कर पाएंगे किसी इंटरव्यू के जाते वक्त।
1: देयर इज अ ट्रिक क्वेश्चन आई सपोज। सी द पॉइंट इज दैट सम टाइम्स लोगों को लगता है कि उनका कैंडिडेचर जस्ट बिकॉज ऑफ अ डिग्री बहुत स्ट्रांग हो गया है। I would only say that today the requirements of a job are just not related to the academic degree. Academic degree is an outcome. आपने एक एग्जाम में किस प्रकार से उस दिन परफॉर्म किया।
0: जी।
1: Probably उसी एग्जाम में आप दो दिन पहले या पांच दिन बाद वही पेपर देते तो शायद वो रिजल्ट नहीं आता।
0: Ups and downs हो सकते थे marks.
1: So that correct. So that outcome is one factor.
0: जी।
1: लेकिन what matters is more than that degree is your human qualities, your behavior, your conduct, your not only the knowledge of your subject but the knowledge of understanding the application of that subject. कि मैं उस पोस्ट पर बैठकर उस डिग्री की मदद से क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं इस ऑर्गेनाइजेशन में। सो अ कैंडिडेट मस्ट अलाइन हिज एकेडमिक क्वालिफिकेशन विद हिज मेंटल मेकअप And his plan to contribute.
0: चलिए यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। कोई आपके दिल के आसपास कोई एक ऐसा खास गाना है जो आप सुनना चाहते हैं, श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं, वही गाना हम प्ले करेंगे अपने लिसनर्स के लिए।
1: चूंकि इट्स यूनिवर्सिटी का चैनल है एंड अ लॉट ऑफ यंग पीपल मस्ट बी लिसनिंग टू इट, तो आई थिंक लक्ष्य मूवी का एक सॉन्ग था।
0: क्या बात है, बहुत बहुत ही खूबसूरत गाना है और ये गाना आपके प्रोफाइल को या यू कहें कि आपके प्रोफेशन को रिलेट करता है कि अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करना है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो लिसनर्स, यहाँ पर जो बातों का सिलसिला लगातार जारी है, आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो श्रोता 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। मैं जिंदगी में ऐसी शख्सियत आपको जब मिल जाए तो निश्चित तौर पर आपको जानना समझना बहुत जरूरी है कि आप किस क्षेत्र से आते हैं, किस तरीके से आपकी कार्य प्रणाली है, आपका जो वर्क नेचर है वो कैसा रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर गौरव डिमरी जी के बारे में, जो कि डायरेक्टर एंड एचआर शारदा ग्रुप हैं, और बहुत सारी बातें इन्होंने ब्रेक पर जाने से पहले हमारे श्रोताओं को बताई। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: एक कैंडिडेट को हायर करते वक्त नो डाउट आपने जो बात बताई कि डिग्री मान्यता रखती है, लेकिन इतना भी नहीं है, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है कि आपके पास अनुभव क्या है। एक फिल्म का डायलॉग भी है कि अगर आप मुझे पहला काम नहीं देंगे और अनुभव की बात करेंगे तो फिर वो मेरा अनुभव कहाँ से कैसे शुरू होगा। तो मैं अनुभव की ही बात करता हूँ कि अनुभव को आप कितना वरीयता देते हैं, या उस वक्त जो आपने कहा कि अगर वो इंटरव्यू अच्छी तरीके से फेस कर पा रहा है, आपके सवाल का जवाब दे पा रहा है, और डिग्री में अप्स एंड डाउन्स हैं, तो मतलब क्या क्राइटेरिया रहता है, किस तरीके से आप उस व्यक्ति का सिलेक्शन करते हैं?
1: मैंने जी देखिए, एवरी जॉब कम्स विद अ जॉब रिक्वायरमेंट, और उसकी जॉब की क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इतनी एज होनी चाहिए, इतना मिनिमम एक्सपीरियंस, इसी डिग्री, दैट हैज टू मैच
0: जी।
1: लेकिन वो कोई भी कैंडिडेट जो उसको मैच करता है वो उसको इंटरव्यू रूम के डोर तक ले आता है। इंटरव्यू रूम के अंदर उसकी जो क्वालिटीज हैं
0: जी,
1: चाहे वो उसकी लीडरशिप क्वालिटीज हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, टेक्निकल नॉलेज हो, और एबिलिटी टू एंगेज हो, वो बहुत मैटर करता है।
0: क्या बात?
1: क्योंकि अल्टीमेटली डिग्री हैज गिवन द थ्योरेटिकल एंड टेक्निकल नॉलेज, बट एक टीम में काम करने के लिए, टारगेट्स को अचीव करने के लिए, कंपेटिटिवनेस लाने के लिए, टीम को साथ लेकर चलने के लिए, एक ऑलराउंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट में काम करने के लिए, एक कैंडिडेट की क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं। क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स तो मार्कशीट और डिग्री ने दिखा दी।
0: जी जी।
1: सो इन एन इंटरव्यू अ पर्सन शुड नॉट फोकस ओनली ऑन व्हाट ही हैज थ्योरेटिकली लर्न, दैट हैज ब्रॉट हिम टू द इंटरव्यू,
0: राइट?
1: व्हाट विल डिफरेंशिएट फ्रॉम हिम टू अदर्स एंड गेट अ सिलेक्शन इज हाउ he has evolved into leadership skills, contributed positively, achieved more than what is required, his ability to zealously work for his goals, that matters.
0: Sir, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इस बात का लोग गलत मायने निकाल लेते हैं कि टॉकेटिव होना बहुत जरूरी है, बातूनी होना बहुत जरूरी है, तो मैं समझता हूँ कि वो चीज अलग है और जो आप बता रहे हैं वो चीज अलग है।
1: जी जी, absolutely. One has to, in minimal words, one can convey a lot.
0: क्या बात है।
1: सो इंटरव्यू के टाइम्स भी लिमिटेड होते हैं, उस ड्यूरेशन में आपको अपने बारे में इट्स नॉट नेसेसरी कि बहुत लंबा बताना है, बट
0: शॉर्ट
1: इन शॉर्ट टाइम फ्रेम यू कैन अचीव, एंड द इंटरव्यू पैनल्स आर जनरली वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल हु कैन कम टू नो द डेप्थ ऑफ योर क्वालिटी एंड नॉलेज।
0: चलिए, यहाँ पर फिर एक ब्रेक आ रहा है जो कि म्यूजिकल ब्रेक है, और गाना जो आप अक्सर सुनते हैं कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, मेरे दिल के आसपास ये खूबसूरत गाना है जो मैं अपने लिसनर्स को सुनाना चाहता हूँ।
1: जी, सो वन सॉन्ग विच रियली आई लिसन एट टाइम्स व्हेन टेक अ ब्रेक इज द सॉन्ग कबीरा फ्रॉम द मूवी जवानी है दीवानी, बिकॉज़ दैट आल्सो सॉन्ग हैज गॉट अ लॉट ऑफ डेप्थ इन इट्स मीनिंग।
0: रियली नाइस, आप जो गाने का सिलेक्शन कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सिलेक्शन कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी से रिलेट कर ही रहा है। सो लिसनर्स, यहाँ पर एक छोटा म्यूजिकल ब्रेक, सो आप कहीं जाएगा मत। एचआर का जो क्षेत्र है, एचआर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और जब आप किसी एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यही सारी बातें हो रही हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। सो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर गौरव डिमरी जी, जो कि डायरेक्टर एंड HR शारदा ग्रुप से हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: आपके सुपुत्र भी आए हुए हैं जो कि आपकी वीडियो बना रहे हैं। मैं उनको कह रहा हूँ कि मेरी भी वीडियो बना लीजिए। बहुत हंसमुख चेहरा है। आप हंसते रहिए जनाब, मुस्कुराते रहिए। सो इंसान की मुस्कुराहट कनेक्ट करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि HR का हम देखते हैं कि

0: खान है तो जाहिर सी बात है कि बंदा खुश मिजाजी के साथ, मतलब वो डर नहीं रहेगा, डर से मतलब वो बेफिक्र नहीं हो जाएगा, लेकिन एक माहौल खुशनुमा हम बना देते हैं। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि वो मुस्कुराहट गायब है, चाहे वो एक जो इंटरव्यू देने आ रहा है और जो इंटरव्यू ले रहा है, एक बात ये। दूसरी बात इसी से रिलेटेड, चूंकि एचआर की बात हो रही है, जॉब्स की बात हो रही है, भाषा कितना मैटर करती है सर। कभी कभी होता क्या है कि किसी व्यक्ति के पास योग्यता है लेकिन अंग्रेजी का जो धारा प्रवाह है वो उसके पास नहीं है, आपकी बात को वो समझ पा रहा है और अपनी बात वो आप तक पहुंचा पा रहा है। वर्तमान समय में हम जब देखते हैं कि मोदी जी लोकल डायलेक्ट की बात करते हैं, आप जिस भी क्षेत्र में आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, उस भाषा में आप अपनी पढ़ाई को अब आगे लेकर जा सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे प्लीज?
1: आपने जो सवाल, दिस इज अ वेरी वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, एंड इवन टुडे a lot of people who are talented, who possess qualities, maybe शायद वो थोड़ा अपने आप को दो कदम पीछे रखते हैं कि शायद उनकी इंग्लिश लैंग्वेज में महारत नहीं है, लेकिन प्योरली फ्रॉम HR पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन से कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप कोई भी एग्जामिनेशन देख लीजिए, या UPSC हो, चाहे वो डिफेंस सर्विसेज हो या गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, यू कैन अपीयर इन द लैंग्वेज, व्हाट मैटर्स इज आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, और आपके अंदर अगर काबिलियत है तो उसके लिए उस काबिलियत के भरोसे आप किस प्रकार से लोगों को एंगेज करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा जरूरी है बजाय कौन सी
0: भाषा
1: का इस्तेमाल होता है। और ये दिस इज, चाहे इट इज ऑन अ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, चाहे इट इज एट लीडरशिप स्पेक्ट्रम इन इंडस्ट्री और इन अ यूनिफॉर्म सर्विस और इन अ सिविल सर्विस, द पर्सन इन्फ्लुएंसेस एंड क्रिएट्स एन एनवायरमेंट ऑफ पॉजिटिविटी बाय द चॉइस ऑफ वर्ड्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज। तो किसी भी कैंडिडेट को कभी भी इस चीज पे नहीं सोचना चाहिए कि मेरी फलाना भाषा पे महारत नहीं है और फलाना भाषा से मैं वीक हूं। इट डजंट मैटर, आपकी काबिलियत मैटर करती है।
0: क्या बात है। सो लिसनर्स, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद फिर हम अपनी मुलाकात को जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए HR के हेड है मिस्टर गौरव डिमरी जी, जो कि डायरेक्टर है HR शारदा ग्रुप में। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर गौरव डिमरी जी, जो कि डायरेक्टर एंड एचआर शारदा ग्रुप से हैं। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। सर कभी कभी ऐसा भी होता है, इससे रिलेटेड ही सवाल आ रहे हैं, चूंकि मुझे लगता है कि शायद हमारे पास समय कम पड़ जाएगा। इंटरव्यू के लिए लेटर्स या यू कहेंगे एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा आती हैं, और फिर सामने वाले को लगता है कि मेरा इंटरव्यू का कॉल होगा नहीं। लेकिन जब हम देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम, एक वक्त के बाद किसी बंदे को कॉल जाता है, तो उसे बड़ी खुशी होती है कि इस ग्रुप से मुझे कॉल आया। इट मींस कि जो मेरा सीवी था वो एक रिजर्व में रखा गया था, उसको संजो कर रखा गया था। या कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, हम इनको भूल जाते हैं, बैंक नहीं रखते हैं, तो उसके बारे में प्लीज थोड़ा बताइए कि क्या होता है।
1: अगेन आई वुड से वेरी वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स को लगता है कि ही इज बेस्ड ऑन द वैकेंसी फॉर अ जॉब, वेदर ऑन अ पोर्टल और अदरवाइज, वो फुली क्वालिफाइड है उस प्रोफाइल के लिए, लेकिन फिर भी शायद उसको वो कॉल नहीं आता। तो ऐसी कोई बात नहीं होती। कई बार पोजीशंस निकलती हैं और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स की वजह से ऑन होल्ड हो जाती हैं। कई बार पूल ऑफ कैंडिडेट्स को और वाइड करना पड़ता है, कई बार सिलेक्शन को नैरो डाउन करने के लिए क्यूआर्स चेंज करनी पड़ती हैं।
0: जी जी।
1: सो ऐसा, लेकिन किसी भी कैंडिडेट को अगर वो क्वालिफिकेशन को मैच करता है तो आज नहीं तो कल ही विल, इफ ही इज क्वालिफाइड,
0: तो कॉल जाता ही जाता है।
1: सो इट इज नथिंग टू वरी अबाउट।
0: सो लिसनर्स, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद फिर हम अपनी मुलाकात को जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए एचआर के हेड है मिस्टर गौरव डिमरी जी, जो की डायरेक्टर है एचआर शारदा ग्रुप में। तो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरी यानी गगन के साथ। और आज स्टूडियो में मौजूद हैं डायरेक्टर एंड एचआर शारदा ग्रुप से गौरव डिमरी जी, जो कि बहुत अच्छा अनुभव अपना मिलिट्री क्षेत्र में इन्होंने देश की सेवा की है। एक अनुशासन को लेकर शारदा विश्वविद्यालय में आते हैं और शायद जब किसी को रिक्रूट करते हैं तो दिमाग में यही रहता है कि बंदा अनुशासित होना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि अनुशासन अगर आपके जीवन में होगा तो निश्चित तौर पर आप कहीं पर भी मात नहीं खाएंगे। फाइनली आपकी तरफ से एक मैसेज अगर मैं कहूं कि एक श्रोता को, एक लिसनर्स को, या जो कोई इंटरव्यू देने आ रहा है उसके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा कि किन किन खास बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए इंटरव्यू देते वक्त?
1: As I said earlier also, educational qualification और technical knowledge आपको इंटरव्यू के दरवाजे पे ले आएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कैंडिडेट सक्सेसफुल होने के लिए अपना इमोशनल क्वेश्चन पे भी ध्यान दे कि वो किस प्रकार से कम्युनिकेट करता है, क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते आप एंगेज नहीं कर सकते। जब तक आप एंगेज नहीं कर पाएंगे आप लीड नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशंस को लीडर्स चाहिए, वो लोग चाहिए जो प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट कर सके, चैलेंजेस को एंटिसिपेट कर सके एंड अ सेट ऑफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके, नॉट कि चैलेंजेस का होने का वेट करें और बोले कि मेरी डिग्री मुझे क्वालिफाई करती है, मैं इन चैलेंजेस को अब सॉल्व करूंगा। इट शुड बी द एंटिसिपेशन ऑफ अ चैलेंज, इट शुड बी the ability to engage with people, emotional quotient and positivity, honesty of purpose, the highest levels of integrity which will make you succeed.
0: क्या बात है?
1: Other than the degree only.
0: So listen, मैं समझता हूँ इन बातों को अगर आप गांठ बांध लेंगे तो आप कहीं पर भी मात नहीं खाएंगे, यानी कि वो जॉब आप हासिल कर ही पाएंगे। चलिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। और बस यही कहूंगा कि सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरी यानी गगन के साथ। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा?
0: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखे नी, ओकेरा के तुरंत साफ करें, जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे
2: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कोनो भी चीज में पानी जमा नहीं होके दे दीदी।

डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बची तो बेटा। बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़क जा मच्छर बन पर भारी।

जय माता की। नवरात्रि के पांचवें दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मोर भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। जय माता की।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: अर्थात ये धरा, ये पृथ्वी एक परिवार है और शारदा परिवार में सुनो शारदा 90.8 FM पर आप सबका स्वागत, इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर वक्त। मैं हूं अगर आपके साथ। स्टूडियो की घड़ी में नौ बजकर 5 मिनट हो चुके हैं। 15 तारीख है, यानी कि थर्सडे का दिन। ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। दिक्कत परेशानी तब होती है जब आप कुछ गलत कर रहे होते हैं और आप कहते हैं कि हाँ मैं गलत। बिल्कुल बातें आपकी गलत है। अगर आप ट्रैफिक में ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे और उसके बाद लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो आप गलत हैं। सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। फिलहाल इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरक्षा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो, तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

सुनो शारदा 90.8 FM पर एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ। 9:13 हो चुके हैं, 15 तारीख है यानी कि बृहस्पतिवार, गुरुवार का दिन। ईश्वर से, माता रानी से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि हम सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमारी जो काया है वो निरोगी काया बन कर रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, उपवास चल रहा है आप लोगों का, फास्ट यानी कि व्रत आप रख रहे हैं। अगर आपकी तबीयत खराब है तो डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करेगा, लेकिन अगर आप व्रत रख ही रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़े थोड़े समय के बाद, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद कुछ ना कुछ आप खाते जरूर रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देरी बढ़ जाए। आज का दिन, जाहिर सी बात है कि वक्त हाथ से रेत के मुआफिक फिसलता चला जाता है। नवरात्रि शुरू हुए थे 11 तारीख से यानी कि रविवार से, और आज हो गई 15 अक्टूबर यानी कि आज है पंचम दिन। और आज के दिन भगवान कार्तिकेय स्कंद कुमार की माता होने के कारण, जिनको स्कंद माता कहा जाता है, तो आज उनका दिन है। और इनकी गोद में बाल रूप में भगवान कार्तिकेय विराजमान रहते हैं। इनकी पूजा करने से संतान सुख, बुद्धि, ज्ञान और परिवार की सुरक्षा का वरदान मिलता है। तो माँ स्कंद माता की जय हो और माता रानी की कृपा हम सब पर सदा बनी रहे। और माता रानी जो हमसे कहती हैं कि यानी कि सबके साथ अच्छा करिए, अच्छा बोलिए, कहीं किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो गलत मत होने दीजिए, जिंदगी का सार यही है। तो मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। ऐसे ही ऑन रोड जब आप चलते हैं तो अगर किसी को जरूरी काम है, जैसे कि एम्बुलेंस है, उसको जरूरी काम ये होता है कि वो अस्पताल पहुंचे, मरीज को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ऐसे शारदा अस्पताल के सामने ट्रैफिक की स्थिति बनी रहती है, और ऑन रोड कहीं पर भी अगर हम देखते हैं तो ऐसी स्थिति अगर आपके सामने है तो सबसे पहले ट्रैफिक में से एम्बुलेंस को निकलने का जो रास्ता है वो आप दीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा सुकून मिले, यार कुछ अच्छा किया जाए ना। और गलत तरीके से गाड़ी मत चलाएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए, है ना। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। 9:15 15 तारीख बृहस्पतिवार का दिन, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय माता दी, लाचो।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: जन्म के समय लगे कमजोर, 14 दिन बाद भी वृद्धि हो कम, छूने पर लगता हो ठंडा या फिर लगता हो गरम, जन्म के पहले दिन या 14 दिन बाद भी आंख और शरीर हो पीला या शरीर दिखता हो नीला, सांस लेने में हो परेशानी, अगर दूध पीने में हो कठिनाई, सांस चलती हो तेज या धंसी लगती हो छाती, त्वचा पर हो छोटी फुंसियां 10 या फिर दिखे बड़ा फोड़ा, नवजात लगे सुस्त या बेहोश या पड़ता हो उसको दौरा, फूला हुआ लगे पेट, हो दस्त या हो रहा हो किसी अंग से रक्त स्त्राव, कटा फटा हो होंठ, चिपका हो तालू, सर में पड़ी हो गांठ, समझ लो बच्चे की है हालत खराब। इन लक्षणों का तुम लेना सारा ज्ञान, अच्छे से सब कर लो इनका ध्यान, देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना और अपने बच्चे को तुरंत SNCU ले जाना। आपका ख्याल ही आपके परिवार को स्वस्थ रखता है, इसीलिए ना करना इन लक्षणों को नजरअंदाज, क्योंकि फर्क पड़ता है।
1: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.
4: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में नौ उसका 25 मिनट हो चुके हैं। 15 तारीख है, हमारे आसपास और क्या खास है उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है कि नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों के बाद दशहरा के बाद करवा चौथ का पर्व, अहोई अष्टमी का पर्व, और फाइनली जिसका हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है वो है दीपावली। दीपावली पर जब हम पटाखे फोड़ते हैं, कहीं कुछ लोग कुछ अपनी बात रखते हैं, साफ सफाई की कुछ बातें होती हैं, तो जिंदगी का जो सार है वो हम जब देखते हैं कि पर्यावरण का हमें ख्याल रखना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जानवरों को भी कोई नुकसान ना हो। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि साल भर का त्यौहार है, अगर आप शगुन करना चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इतना ज़्यादा धमाका, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन, तो मतलब थोड़ा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। खैर, कुल मिलाकर इस वक्त साफ सफाई का दौर चल रहा है, इस वक्त दिमाग में ये दौड़ रहा है कि क्या मिलेगा बोनस में, क्या मिलेगा गिफ्ट दीपावली का उपहार। फिलहाल ये तो देखने वाली बात है कि आपके ऑफिस में क्या क्या आपको मिलेगा या आप अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको क्या देने वाले हैं। लेकिन फाइनली भारत सरकार ने घोषणा कर दी है, अजय वाह हम भी हैं लेन में। नहीं नहीं, आप लाइन में नहीं है, लेकिन अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं तो 78 दिन यानी कि 78 डेज का बोनस का ऐलान किया गया है। भारत सरकार ने ये ऐलान कर दिया है और इस तरीके से जो रुपए बटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 2009 करोड़ रुपए इस तरीके से बोनस में रेलवे कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आप मेहनत करते रहिए, खुश रहिए और सरकार की तरफ से इस बोनस का लुत्फ उठाएगा। आपकी दीपावली शुभ हो, आने वाले सभी कर्मचारियों की दीपावली शुभ हो। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीके से आप सबको भी बोनस मिलेगा, है ना। साल भर का त्योहार मिलना तो चाहिए, बिल्कुल मिलेगा, धमाका होगा। कमरिया ब्यूटीफुल ट्रैक, ऑल इन सुनो शारदा 90.8 FM। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है।
1: मैं इलेक्ट्रिक वाहन
0: एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेने पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से उसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
2: शारदा बुरे काम का बुरा नतीजा सुन भाई चाचा सुन भतीजा। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम अच्छी अच्छी बातें भी आप तक पहुंचाएं। हम आप तक ये भी पहुंचाएं कि क्या गलत हो रहा है और क्यों गलत हुआ और इसकी वजह से किसको नुकसान हुआ और भविष्य में इस तरीके की घटनाएं दुर्घटनाएं न घटें कोर्ट ने क्या कहा। जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है सबसे पहले मैं एक बात यूं कहना चाहूंगा कि अगर कहीं किसी से झगड़ा हो रहा है क्षण भर के लिए सोचिए, क्षण भर के लिए उस गुस्से पर कंट्रोल करिए। अगर आप नहीं करते तो आप जानते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान होता है, पुलिस कोर्ट कचहरी सजा है ना, और उसके बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है, रुपया समय सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ऐसी एक घटना घटी मेरठ की जिसको हम सब जानते हैं, नीले ड्रम वाली जो घटना है ना, जिस तरीके से वो घटना घटी हम सब ने देखा कि उसने एक माँ की कोख उजाड़ दी, एक घर बर्बाद कर दिया है ना, और उसके बाद रिजल्ट जो आया है वो आज हमने देखा है, यानी कि उन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई है। अगर आप कुछ अलग होना चाहते हैं, कुछ और सोच रखा है, तो प्लीज आप अपनी बातें अपनी फैमिली से शेयर करिए कि मैं यहां नहीं रहना चाहता, यहां नहीं रहना चाहती। लेकिन अगर आप ऐसे कदम उठाएंगे तो परिणाम तो ऐसे आएंगे ही आएंगे ना। तो आप खुद सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है। शाबाश मेरे लाल, गुड जॉब, एक अच्छा मुद्दा उठाया है और लोगों की आंख खोलने वाला ये फैसला आया है, गुड जॉब। चलिए हंसते मुस्कुराते आप आगे बढ़ते रहिए, जिंदगी को सरल सुगम आसान बनाइए। और ऐसी ऑन रोड जब हम अक्सर देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर लोग आगे भी बढ़ जाते हैं। कहते हैं ना पानी डालो यार, चलो कोई बात नहीं, छोटा सा मतलब चोट तो लगी है, चोट गाड़ी को लगी है ना, गाड़ी सही हो जाएगी, आपके पास इंश्योरेंस है ना। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, मैं तो ये चाहता हूं कि ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत, जियो और जीने दो इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ। आगे बढ़ते हैं, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वॉइस वन एंड ओनली सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सुनते रहिए मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ, 9:40 15 तारीख। ब्यूटीफुल ट्रैक, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं लेकिन गाड़ी पूरे होशो आवाज में चलाएगा, नामुमकिन। मालिक फिल्म का ये गाना, राजकुमार राव।

0: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: क्या बात है, क्या बात है, घूमी घूमी सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर, नेहा कक्कड़ की आवाज। अगर आप घूमी घूमी करना चाहते हैं, कुछ खास करना चाहते हैं, तो अपने अपने शहर में डांडिया करेगा। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन, आपके साथ 9:46 हो चुके हैं। 15 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन, माँ स्कंद माता का आज दिन है, तो माता रानी से ईद हुआ। ये प्रार्थना करता हूं कि सबका दिन शुभमय गुजरे, अच्छा गुजरे, आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपकी काया निरोगी काया रहे, है ना। और जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि नवरात्रों में बड़ी धूम होती है, गरबा की धूम होती है, डांडिया की धूम होती है, तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे पंडाल सजाए जा रहे हैं। चितरंजन पार्क दिल्ली का अगर मैं जिक्र करूं तो ये एक ऐसा इलाका है कि यहाँ पर बड़ी धूम रहती है। और जहाँ जहाँ आप रहते हैं, आप अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे फंक्शन हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ ज़रूर जाएगा, क्योंकि परिवार है तो खुशियाँ हैं। चलिए, अगर आप ऑन रोड है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी ग्रेटर नोएडा में एक फेस्टिवल चल रहा है, एक मेला चल रहा है,
1: मेला दिलों का आता है।
0: ये क्या था, मुझे लगा शब्द उसके साथ अंताक्षरी शुरू करनी है, मैं शुरू हो गया। चलिए, रूट डायवर्जन अलर्ट है, यानी कि ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 13 से 17 अक्टूबर तक IHGF यानी कि दिल्ली फेयर चल रहा है, और इस वजह से एक्सपो मार्ट और नॉलेज पार्क के आसपास के रास्तों पर भारी ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। प्रभावित मार्ग यानी कि जो प्रभावित रहेंगे, परिचौक, नॉलेज पार्क और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर इस फेयर की वजह से, इस मेले की वजह से गाड़ियों का जो दबाव है वो बहुत ज्यादा रहेगा, और यदि आप इस रूट पर आ जा रहे हैं तो जाम से बचने के लिए वैकल्पिक रास्ते का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सूरजपुर कासना रूट का आप उपयोग कर सकते हैं। और जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सोशल मीडिया के जरिए अपडेट देख सकते हैं कि क्या खुला है और कहां रास्ता बंद है। धुरंधर इस ब्यूटीफुल फ्रेम फिल्म का ये ट्रैक, क्या बात है, ब्यूटीफुल ट्रैक, ऑल इन सुरुशादा 90.8 FM। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ 9:48 15 तारीख, गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुरुशादा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग, जाऊंगा नाल रंजे ते जोगी ते तैनू जोगन होना पै जाऊंगा।

वक्त का इशारा, मैं होता हूँ 9211। आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हम याद कर रहे हैं, आज जन्मदिन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को। उनको योगदान को हम कभी भूल ही नहीं सकते, उनको हमेशा अपने दिल में हम रखते हैं और उनके काम को सराहा जाता है, उनके काम को हम याद करते हैं। बच्चों के चहेते, हम सब के चहेते, मुझे लगता है कि इस तरीके से जब इंसान आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो दिल में जगह बना लेता है। अगर आज आपका भी जन्मदिन है तो आपको बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप किसी को स्मृतियों में याद कर रहे हैं, स्मृतियां यानी कि अपने आप में एक यादगार है, याद है कि किसी को आप याद कर रहे हैं, हो सकता है कि आज किसी की पुण्यतिथि भी हो, तो उनको याद करिए अच्छे काम के साथ, अच्छी सोच के साथ। बस आप आगे बढ़ते रहिए, ना किसी को टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे और बस आप सुनते रहें ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सुनो शारदा 90.8 FM, इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, समुदाय के लिए समुदाय के लोगों द्वारा। सुनते रहिए 9 से 10 लाइव, मैं रहता हूं आपके साथ मंडे टू सैटरडे। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। वे जुनून फ्रॉम द मूवी।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति। दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ यही है कि हे ईश्वर पिता परमेश्वर, मेरी जो काया है वो निरोग आप रखें, आप हमें ऐसा आशीष दें, आप हमें ऐसा वर दें, ये ईश्वर से हमारी कामना है। लेकिन सच बात तो ये कि अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो मुझे लगता है कि ईश्वर, खुदा, पिता परमेश्वर हमारी मदद करेगा। और कहा भी जाता है कि निरोगी काया अगर आपकी है तो यकीन मानिए कि दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी आप ही हैं। राम राम, दोस्तों, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभकारी, और मैं हूं गगन आपके साथ। दोस्तों, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बेहद जरूरी मुद्दे पर बात उठाने वाले हैं, किशोरों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य। वाकई एक गंभीर विषय है, अच्छा विषय है, और इसको जानना समझना बहुत जरूरी है और जागरूकता भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, 10 से लेकर 19 साल की उम्र में न सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन में भी कई सवाल उठते हैं। ऐसे में सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह माता पिता, स्कूल, समाज और सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करेंगे हमारे चिर परिचित हमारे भैया अर्थात सेहतिया सिंह जी। तो सेहतिया सिंह जी, सुरोशादा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद गगन जी। जैसे किसी बगीचे में सही समय पर पानी और खाद ना मिले तो पौधा सूख जाता है, वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह ना मिले तो बच्चा उलझ सकता है। इसीलिए इस उम्र में सही बातें जानना और समझना बहुत ही जरूरी है, और आज मुझे लगा आपसे बात करके हम अपने प्यारे मित्रों के साथ ये जानकारी साझा कर पाएंगे।
4: भाई सेहतिया सिंह जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। वैसे किशोरावस्था के दौरान शरीर और मन में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्योंकि आप भी उम्रदराज हैं, आप भी उस दौर से गुजरे हैं, मेरे भी घर में बच्चे हैं, आपके भी घर में बच्चे हैं, हम समाज को देखते हैं, तो एक अनुभवी व्यक्ति होने के नाते इस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं।
5: भाई, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, हम सभी के घरों में बच्चे हैं और वो उम्र के साथ ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं जिन्हें कई बार वो आपस में या अपने बड़ों से साझा नहीं कर पाते। दरअसल जब बच्चा 10-11 साल का होता है तब से उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं, जैसे लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड्स शुरू हो जाती हैं। शरीर बदलेगा तो उसका असर मन पर भी पड़ेगा ही, कभी गुस्सा आएगा, कभी बिना बात के मन उदास हो जाएगा या अकेलापन लगेगा, ये सब एकदम नॉर्मल है, डरने की बात नहीं है।
4: वाकई बहुत अच्छी बात आप एक अनुभव के साथ हमारे साथ साझा कर रहे हैं। सियातिया सिंह जी, एक अनुभव मैं भी साझा करना चाहूंगा इस बात पर आने से पहले जो हम स्क्रिप्ट के आधार पर पढ़ रहे हैं
5: जी।
4: मेरे एक मित्र थे साकिब साहब, उनके घर में कोई समस्या, मैं समझता हूँ खुलकर बात कर लेता हूँ, उनकी कोई एक महिला मित्र थी, उनके सामने कोई समस्या आई। चूंकि हम डॉक्टर से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, दो बातें हो सकती थी सर वहां पर, या तो मुझे हंसना चाहिए था या मुझे समझदारी दिखानी चाहिए थी, क्योंकि मुझे लगा कि उसने बिना बेझिझक मुझसे बातें की, तो वही समझदारी दिखाते हुए मैंने भी वही बात डॉक्टर साहब से जानकर पूछकर उस समस्या का हल उन तक पहुंचा दिया। आशय दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यही कि हमें भी इसी प्रकार की समझदारी दिखाने की बहुत जरूरत है, और शायद ये जो कहानी है, ये जो स्क्रिप्ट है, आगे हमें यही बताएगी। लेकिन भैया, अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जब हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बातें करते हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं?
5: भाई देखो, कई बातें हैं जिनके बारे में खुलकर बात करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि महावारी यानी पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की और औरत के शरीर में होती है। इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी को शर्म या डर ना लगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये अगर महिलाओं से संबंधित है तो इसके बारे में जानकारी केवल महिलाओं को ही हो, पुरुषों को भी इसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, वरना कई प्रकार की भ्रांतियां मन में पल जाती हैं और उन्हें लेकर समाज में किसी तरह की कुंठा बन जाती है। ऐसा हमें समाज में नहीं होने देना चाहिए। अब बात आती है गर्भ ठहरने की, यानी बच्चे होने की बात। आजकल ये जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ये समझें कि बिना सोचे समझे जल्दी माता पिता बनना कई प्रकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसलिए बचाव के तरीके जैसे गर्भ निरोधक उपाय की जानकारी सभी को होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, किसी भी संबंध का फैसला सोच समझकर ही लेना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना कहने का पूरा हक है और अपने शरीर के बारे में फैसला लेने का भी पूरा अधिकार है। ये समझना ही असली समझदारी है।
4: वाकई सेहतिया सिंह जी, आपने बहुत सच्ची अच्छी बात हमारे श्रोताओं तक आम भाषा में समझा दी। दोस्तों, इस बात को जानिए, समझिए और जो आपके करीब है, जो करीबी है, उसे जरूर शेयर करिए। समस्या अगर कुछ है तो निश्चित तौर पर उसका समाधान है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी किशोर को डर लगे या शर्म आए या मन में कोई सवाल हो तो सेहतिया भैया उस वक्त उसे क्या करना चाहिए?
5: सवाल उठाना ही सबसे अच्छी बात है। ऐसे में संकोच नहीं करना चाहिए। अपने घर में माता पिता से, स्कूल में टीचर से या किसी ऐसे बड़े से बात करनी चाहिए जिस पर भरोसा हो। अगर डॉक्टर या काउंसलर से बात करने का मौका मिले तो बिना हिचक अपने सारे संदेह पूछ लेने चाहिए।
4: वाकई बहुत सच्ची अच्छी बात आपने फिर से दोबारा हमारे श्रोताओं तक पहुंचा दी। सियादिया भैया, जब हम किशोरों की यौन और प्रजनन सेहत की बात करते हैं तो कई बार समाज की पुरानी सोच और परंपराएं ही रुकावट बन जाती हैं, जैसे लड़कियों पर जल्दी शादी करने का दबाव और लड़कों पर हमेशा रो मत मर्द बन का बोझ हमेशा रहता है। तो ऐसे माहौल में सही जानकारी और सही सुविधा कितनी जरूरी है?
5: बिल्कुल गगन जी, चाहे गाँव हो या शहर, ऐसी सोच हर जगह मिलती है। लड़की बड़ी हो गई तो लोग कहते हैं कि बोझ बन गई, लड़कों से कहा जाता है कि अब घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ऐसे ताने मिलेंगे तो बच्चे कैसे खुलकर बात करेंगे? इसलिए जरूरी है कि किशोरों को सही जानकारी दी जाए, वो भी उचित समय पर, और ये उन्हें अच्छे से समझाया जाए और उनकी बात सुनी भी जाए। किशोरों को डांटना नहीं है, उन्हें प्यार से समझाना है, उनकी बात सुननी है और उनका साथ भी देना है।
4: बिल्कुल आपने सही कहा कि उनकी बात सुननी है, समझनी है, और जो आपने कहा आखिर में कि उनको डांटना नहीं है। डांटने का मतलब सेहतिया भैया, मुझे लगता है कि बात का विरोध करना या बात को वहीं रोक देना है। लेकिन जब आप बात को सुनेंगे तो वो अपनी समस्या आपके सामने लेकर आएगा और मैं समझता हूँ कि वक्त रहते हुए उसका समाधान हो जाएगा। आगे बढ़ते जी जी, कुछ कह रहे थे।
5: दरअसल हम कई बार बच्चों को डांट इसलिए देते हैं कि या तो हमारे पास उनके प्रश्नों का जवाब नहीं है या फिर हम उनसे इस विषय पर बात करने में झिझकते हैं।
4: बिल्कुल,
5: जबकि ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि कोई किशोर अपने बड़ों से इस विषय पर बात करना चाहता है। तब वह ये समझता है कि ये सबसे मेरे निकट हैं, इसलिए मुझे अपने मन की बात इनसे कह देनी चाहिए। वहीं इस समय पर अगर उन्हें डांट दिया जाए तो वे किसके पास जाएंगे।
6: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आप कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि एक अनुभव वाले व्यक्ति को हमने इस कार्यक्रम में बुलाया जो अपने अनुभव के साथ हमारे साथ ये बातें हम तक पहुंचा रहे हैं। सियातिया भैया, हम देख रहे हैं कि कई जगह बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। ऐसा करने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है, और अगर किशोरी गर्भवती हो जाएं तो ये खतरनाक हो सकता है ना?
5: बिल्कुल, ये चिंता की बात है। अभी हाल ही में दिल्ली का एक केस सभी ने सुना होगा, इस विषय से संबंधित ही वह समस्या थी। खैर, आज के विषय पर बात करते हैं। शादी से लड़की के ऊपर बहुत बोझ आ जाता है, शरीर पर भी और मन पर भी। अगर कम उम्र में वो गर्भवती हो जाए तो माँ बच्चे दोनों पर खतरा आ सकता है। फिर लड़की की पढ़ाई, करियर, सपने सब पीछे छूट जाते हैं। जिंदगी बस घर गृहस्थी तक ही सिमट कर रह जाती है।
6: बिल्कुल आपने सही कहा। अब मैं आपसे ये जानना समझना चाहता हूँ कि अगर कोई लड़की गलती से गर्भवती हो जाए तो कई बार वो डर की वजह से, समाज की वजह से चोरी छुपे गर्भपात करवा लेती है। ये कितना खतरनाक है, क्योंकि मैं बहुत डर के ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, और जबकि मैं समझना भी चाहता हूँ, हमारे लिसनर्स भी समझना चाहते हैं कि ऐसे में सही कदम क्या होगा।
5: दरअसल जब किसी किशोरी को डर लगता है, शर्म आती है या सही जानकारी नहीं होती तो वो चुपचाप गलत जगह जाकर डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भपात करवा लेती है। ऐसे में उसे नुकसान हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, बहुत खून बह जाना, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। इसलिए सही जानकारी जरूरी है। अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से उसे बिल्कुल बचाया जा सकता है।
6: बिल्कुल दोस्तों, और आखिर की जो लाइन है उसको मैं रिपीट करना चाहूंगा, अर्थात दोहराना चाहूंगा, सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से बचा जा सकता है, जो हमारे सेहतिया भैया आपको बता रहे हैं। अब मैं आपसे समझना चाहूंगा सेहतिया भैया कि अब एक दूसरी समस्या पर हम बात करना चाहेंगे। आजकल किशोरों में यौन संक्रमण और HIV जैसी बीमारियों का खतरा क्यों बढ़ रहा है?
5: दरअसल किशोरावस्था में शरीर और मन में कई बदलाव आते हैं। वे बहुत सी नई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें जरूरी जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि सुरक्षित यौन संबंध क्या है या कंडोम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो वे कभी कभी ऐसे काम कर सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं होती। HIV और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलते हैं
6: जी।
5: अगर किशोरों को ये नहीं पता कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए तो वे अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि उन्हें खुलकर सही और साफ जानकारी दी जाए।
6: बिल्कुल आपने सही कहा, और यही वजह है कि कहते ना कि घर प्राथमिक पाठशाला होती है, और यहाँ आप अपने माता पिता से यानी कि पेरेंट्स से अपनी बातों को डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी बात सियातिया जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि संगत का बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आपकी संगत अच्छी है तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं सियातिया जी, हम समझना चाहते हैं कि हमने किशोरों की शारीरिक सेहत और यौन स्वास्थ्य की बातें की हैं, लेकिन एक बात जो अक्सर पीछे छूट जाती है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल किशोरों में हम देख रहे हैं कि डिप्रेशन, चिंता और तनाव की दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो सवाल यही है कि क्यों बढ़ रही हैं?
5: देखिए, किशोर नए माहौल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, शरीर में बदलाव आता ही है, और ऊपर से समाज की उम्मीद कि तू लड़का है रो नहीं सकता, या तू लड़की है समझदारी से चल, ये बातें दिमाग पर बोझ डालती हैं। कोई लड़का या लड़की किसी बात को लेकर परेशान है लेकिन उसे बोलने की इजाजत नहीं है, तो क्या होगा? ये कुछ वैसा ही होगा जो अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के एक केस में हुआ, जहां पर लड़की ने घर वालों से अपने गर्भावस्था को छुपाए रखा और लंबे समय तक नहीं बताया। नतीजा, जब ये बात खुलकर सामने आ गई तब उसके माँ बाप ने उसका साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि आगरा ले जाकर उस बच्ची की पानी में डुबोकर हत्या कर दी। सोचिए, एक बाप जिसने उस बच्ची को पैदा किया, बड़ा किया, अपने हाथों से उसकी जान ले लेता है, कितना गलत है। लेकिन इस सिचुएशन सोचिए बनी क्यों, क्योंकि यदि उस पिता ने उस बच्ची की बात शुरुआत में सुनी होती, या उसे मौका दिया होता बात करने का, या माहौल घर में इतना खुला रखा होता, तो ऐसी मुसीबत घर में आती ही नहीं, या समय रहते इस बात को समझ लिया गया होता और बच्ची का अगर गर्भपात कराने की आवश्यकता होती तो समय रहते इस पर कोई उचित निर्णय ले लिया गया होता, मगर क्योंकि हम परिवार में बच्चों को इतना बोलने की छूट ही नहीं देते जिसके चलते वो एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसी के चलते कई बार किशोर रिश्तों को लेकर डरे रहते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता, इससे उन्हें डर लगता है। उल्टा लोग कहते हैं कि चुप रहें, ऐसी बातें मत करें, इसलिए किशोर को सुनने और समझने की बहुत जरूरत है। अगर वो मदद लेते हैं तो ये कमजोरी नहीं है, समझदारी है। स्कूलों में काउंसलर हो, घर में प्यार से बात हो और हेल्थ सेंटर में उचित सलाह मिले तो बहुत कुछ सुधर सकता है और बड़ी मुसीबतों से बचा जा सकता है।
6: भाई आपने बहुत विस्तार से एक उदाहरण के साथ आपने एक बात रख दी, क्योंकि आप सामाजिक प्राणी हैं और आपने जो जिंदगी में देखा है, जो आस पड़ोस में देखा है, वो बात आपने सामने रख दी। तो मुझे लगता है कि सही कहा कि अगर वक्त रहते हुए समस्या का समाधान ढूंढना है तो समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। दोस्तों, किशोरों के सामने बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे शरीर में हो रहे बदलाव, रिश्तों की समझ और सही गलत का फर्क। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वे अपने फैसले समझदारी से ले सकें? जी सत्य सिंह जी।
5: हाँ बिल्कुल, सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को समग्र यौन शिक्षा दी जाए। अब नाम सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें सिर्फ सेक्स की बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों को ये समझाया जाता है कि उनका शरीर कैसे बदलता है, उनके अधिकार क्या होते हैं और रिश्तों में कैसे समझदारी और जिम्मेदारी से फैसले लिए जाने चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की को स्कूल में बताया जाए कि पीरियड्स बिल्कुल सामान्य चीज है, इसे लेकर शर्माने की जरूरत कतई नहीं है, या किसी लड़के को सिखाया जाए कि अगर कोई ना कहे तो उसे मानना चाहिए, तो दोनों आगे चलकर ज्यादा समझदारी और इज्जत से रिश्ते निभाएंगे।
6: बिल्कुल आपने सही कहा कि बातों को मानना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि रिश्ते मजबूती से हम लोग आगे निभा सकें। जो संबंध है पिता पुत्र का, माँ पुत्री का, या एक परिवार का एक दूसरे के साथ जो संबंध बना हुआ है, वो समझदारी से ही निभाया जा सकता है। दोस्तों, किशोरों को सही जानकारी और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या गर्भ से बचने के उपाय यानी गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जानकारी भी दी जानी चाहिए? सियतिया सिंह जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
5: बिल्कुल, एकदम दी ही जानी चाहिए। जब कोई किशोर या किशोरी यौन संबंध के बारे में सोचने लगते हैं तो उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी देना बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक साधन इस जानकारी का अहम हिस्सा है। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं है और वे किसी रिश्ते में शारीरिक रूप से जुड़ जाएं, फिर अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो तो उसकी पढ़ाई, करियर, पूरा भविष्य बिगड़ सकता है। उस लड़की की सेहत भी खतरे में पड़ सकती है। अब अगर पहले से उसे पता हो कि कंडोम क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली कैसे काम करती है, या फिर इमरजेंसी पिल कब लेनी चाहिए, इन बातों की जानकारी से फैसला समझदारी भरा होगा।
6: इन बातों की जानकारी से फैसला समझदारी भरा होगा, ये जो वार्तालाप है बहुत सही दिशा में जा रहा है दोस्तों। अब बात मैं ये समझना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर किशोरों को ये सब सिखाया या बताया गया तो वो कहीं ऐसा ना हो कि गलत रास्ते पर ना चल पड़े।
5: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जानकारी देना कोई गलत रास्ता सिखाना नहीं होता, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनाना होता है। अगर किशोरों को कुछ बताया ही नहीं गया तो वे कहीं और से, इंटरनेट या दोस्तों से अधूरी या गलत जानकारी लेकर उलझ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना, अध जल गगरी छलकत जाए, यानी आधी अधूरी जानकारी ज्यादा नुकसानदायक होती है। लेकिन अगर स्कूल, घर या हेल्थ सेंटर में खुले मन से बात हो तो वे खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
6: बिल्कुल सही कहा आपने सेहतिया भैया जी। आपने बताया कि किशोरों को सही जानकारी और सही माहौल देना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से भी कोई ऐसी पहल हुई है, इसके बारे में भी बताइए।
5: बिल्कुल भैया, सरकार ने इस पर काफी काम किया है। देखिए, एक योजना है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK। इसके तहत किशोरों को सेहत, पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य और नशे से बचाया कैसे जाए, इसके बारे में उचित जानकारी दी जाती है।
6: इसके बारे में उचित जानकारी दी जाती है, तो इसको जरूर आप सुने, जाने, समझें, और जब आप जानेंगे समझेंगे मुझे लगता है तो फिर कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं आखिर इस योजना में क्या क्या सुविधा मिलती है। यदि कोई किशोर या किशोरी हेल्प लेना चाहे अर्थात मदद लेना चाहे तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं।
5: RKSK बहुत ही काम की चीज है। सरकार ने इसे खास तौर पर 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया है। इस योजना के कई हिस्से हैं। पहला है किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक। ये सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं जहां किशोर अपनी समस्या खुलकर डॉक्टर या काउंसलर से कह सकते हैं। क्लिनिक में उन्हें उचित सलाह मिलती है। दूसरा है अनुपूरण कार्यक्रम। इसके तहत लड़के और लड़कियों को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली दी जाती है ताकि उनमें खून की कमी न हो। तीसरा है सहकर्मी शिक्षक योजना। इसमें गांव के ही कुछ लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने जैसे बाकी बच्चों की सेहत की बातें कर सकें।
6: यानी कि गाइडेंस मार्गदर्शन ट्रेनिंग बहुत बहुत बहुत जरूरी है और यही बात आप हमारे सेहतिया भैया से सुन रहे हैं समझ रहे हैं। अगर ऐसा होता है सेहतिया सिंह जी तो वो क्या होता है क्यों होता है अगर आप थोड़ा से विस्तार से बता सके।
5: हाँ, अब जैसे मेरे गांव की सीमा है वो कक्षा 10 में पढ़ती है। RKSK से जुड़ने के बाद सीमा अपनी सहेलियों को मासिक धर्म साफ सफाई और सुरक्षित यौन व्यवहार पर खुलकर बात करना सीखती है जानकारी देती है। सहेलियां भी अपनी बात बिना झिझके सीमा से साझा करती हैं। चौथा है मासिक धर्म स्वच्छता योजना। इसमें सरकार सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए पैसे देती है ताकि गांव की लड़कियां साफ सफाई से पीरियड्स संभाल सकें। पहले कई लड़कियां कपड़े का इस्तेमाल करती थीं जिससे इन्फेक्शन हो जाता था। अब ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। RKSK सिर्फ आम किशोरियों के लिए ही नहीं बल्कि LGBTQ बच्चों जैसे लेस्बियन गे ट्रांसजेंडर्स के लिए भी है। डॉक्टर ANM काउंसलर सबको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वे सभी की मदद बिना भेदभाव के करें।
6: यानी कि ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है और इसको जान लीजिए समझ लीजिए कि हम क्या करें क्या ना करें। भैया अगर RKSK जैसा प्रोग्राम हर गांव हर स्कूल तक पहुंचाया जाए तो किशोर सिर्फ तंदुरुस्त नहीं होंगे बल्कि कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप?
5: आप सही कह रहे हैं। देखिए भैया एक और बढ़िया योजना है अर्श। इसका मतलब है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। यानी किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से शरीर और सेहत से जुड़ी जरूरी बातें समझाना जैसे कि शरीर में बदलाव क्यों होते हैं पीरियड्स और यौन व प्रजनन से जुड़ी बातें क्या हैं। इन बातों को धीरे धीरे प्यार से खुलकर समझाया जाता है।
6: भाई ये तो बहुत बढ़िया जानकारी है। इसके बारे में और अगर हम कुछ बात कर सकें या कुछ और आप हमें आगे बता सकें तो प्लीज बताइए।
5: हाँ, अब सरिता की आप बीती आपको बता देता हूँ। 14 साल की सरिता पढ़ाई में बहुत तेज है। पहले जब कोई पीरियड्स या शरीर के बदलाव की बात करता था तो सरिता और उसकी सहेलियां नजरें चुरा लेती थी शर्मा जाती थी। फिर एक दिन गांव में RKSK योजना के तहत किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उस दिन ANM दीदी भी आई। उन्होंने लड़कियों से प्यार से बात की, बोली कि पीरियड्स आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो शरीर का एक सामान्य हिस्सा है या प्रक्रिया है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे साफ सफाई रखनी है, कौन सी आदतें अपनानी हैं। उस दिन की बातें सरिता के दिल और दिमाग में घर कर गईं। अब सरिता खुलकर बात करती है, अपनी सहेलियों को भी समझाती है।
6: बिल्कुल भैया, जब कोई इतनी गंभीर बात हो और खासकर सेहत को लेकर तो खुलकर बात करनी ही चाहिए। इसमें डर और शर्म करके अपना ही नहीं हम दूसरों का भी नुकसान कर रहे होते हैं।
5: लड़कियों की सेहत और पीरियड से रिलेटेड एक बहुत ही उम्दा क्वालिटी की एक बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों, नाम है पैडमैन। अगर हो सके तो कभी उसे देखिएगा, आपको समझ आएगा कि ये कितनी अच्छी जानकारी इस फिल्म के माध्यम से आम जनता के बीच में प्रसारित की गई है। खैर आज की बात करें तो सरिता की सहेली गीता कई दिनों से थकी थकी सी रहती थी, कुछ खाने का मन नहीं करता था, चक्कर आते रहते थे। फिर वह आंगनवाड़ी केंद्र गई तो वहां मौजूद ANM रेखा दीदी ने गीता से बात की। फिर उसकी जांच करवाई, पता चला कि उसे खून की कमी यानी एनीमिया है। अगर समय रहते पता न चलता तो परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन समय पर इलाज मिला और गीता स्वस्थ हो गई।
6: बिल्कुल सही बात है दोस्तों, समय पर इलाज मिलना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। यानी कि एनीमिया, अगर शरीर में आपके खून की कमी है तो उसको एनीमिया कहा जाता है, और खून बढ़ाने के लिए हमारा खान पान अच्छा होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, तो मतलब ये कि ये योजनाएं सच में जमीन पर असर कर रही हैं। ये मेरा सवाल है सियातिया भैया जी आपसे, तो मैं समझना चाहूंगा क्या कहना चाहेंगे आप?
5: आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, तो सुनिए। सबसे प्रेरणादायक बात तो ये रही, पास के गांव की रीना की कहानी। रीना बहुत होनहार लड़की थी, 8वीं में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लाए, लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो घर वालों ने शादी की बात शुरू कर दी। बोली, अब ज्यादा पढ़ाई का क्या फायदा, लड़की तो घर ही संभालेंगी। रीना ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंगनवाड़ी दीदी और स्कूल की शिक्षिका से बात की। उन्होंने उसके माता पिता को समझाया कि 18 साल से पहले शादी करना न सिर्फ कानूनन गलत है, बल्कि लड़की की सेहत और भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने यह भी बताया कि अब सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और स्किल ट्रेनिंग देती है। धीरे धीरे परिवार मान गया। आज रीना इंटर की पढ़ाई कर रही है और आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद करती है।
6: बिल्कुल दोस्तों, कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि अगर आपकी सोच अच्छी है, कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, समाज के लिए, और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तो जो कुछ आप सीखेंगे और समाज में आप देंगे, तो वो एक दूसरे की मदद से कहीं ना कहीं हम आगे अपने देश में योगदान दे रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। जब सही जानकारी सही समय पर सही तरीके से मिले तो किशोर अपने फैसले खुद लेने लगते हैं। क्या कहना चाहेंगे?
5: किशोर छोटे बच्चे नहीं होते और ना ही वो पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, वे बीच का सफर तय कर रहे होते हैं। ऐसे में उन्हें सुना जाना और साथ दिया जाना बहुत जरूरी है।
6: बिल्कुल सही कहा भैया आपने। ये ठान लें कि हम किशोरों को टोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, सुनेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि जब जानकारी सही होगी, सोच खुली होगी, तभी सेहत भी अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कही के अगले एपिसोड में। पर जाने से पहले हम एक शपथ लेते हैं, और शपथ से पहले बस यही कहना चाहूंगा कि इस जानकारी का लाभ उठाएगा, जैसा जैसा कहा गया है इस पर गौर फरमाएगा, डिस्कस करेगा, यानी कि चर्चा करेगा अपने एक्सपर्ट के साथ, जो इस जानकारी को, जिनको मालूमात है। डरेगा मत, घबराएगा मत। तो सियातिया जी, एक शपथ लेते हैं, पहले मैं बोलूंगा उसके बाद आप बोलेंगे।
5: बिल्कुल।
6: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
5: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
6: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
5: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
6: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
5: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
6: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे, ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
5: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
6: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
5: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
6: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे, ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
5: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे, ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
6: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
5: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
6: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा।
5: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा।
6: सेहत सही तो लाभ कई। जी हाँ, आरजे के रूप में मैं गगन आपके साथ जुड़ा रहा, और सेहतिया के रूप में हमारे साथ जुड़े रहे
5: शरद शर्मा।
6: तो ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा? 0120406025 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर मेल के माध्यम से मेल जोल बढ़ा सकते हैं, और शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे वो आप सबके लिए खुले हुए हैं। जब भी मन करे तो आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विषय वाकई बहुत अच्छा था, गंभीर था, और अच्छी तरीके से हमने आप तक पहुंचाया। फिलहाल वक्त का इशारा, मैं होता हूँ 9:11। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। न टेंशन लेने की जरूरत, न किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
7: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित,
1: टीबी रोगी के साथ रहते हों,
0: मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग, तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
0: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
2: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

जय माता की। नवरात्रि के पांचवें दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मोर भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। जय माता की।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: जय माता की। नवरात्रि के पांचवें दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मोर भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। जय माता की।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए

नमस्ते, मेरा नाम सिया है। मैं 12 साल की हूँ और मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे को पढ़ना पसंद है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और बातें करना पसंद है। मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ, घर पर गेम्स खेलती हूँ। सबसे ज्यादा तो मुझे भूतों की कहानी सुनना पसंद है। बहुत दिन पहले छुट्टी में मैं अपने गांव गई थी। गांव में मैं अपने दादा और अपनी दादी के साथ रोज घूमने जाती थी और फिर वहां जाकर मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे गले पर एक बड़ा गोला जैसा बन गया था। अप्पा और अम्मा काफी डर गए थे। फिर वो मुझे गांव में डॉक्टर अंकल के पास ले गए। पता है, डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा कि मेरे को तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हो गई है। अब पूछो कि टीबी क्या होती है? ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया पता है ना, ये बहुत छोटे छोटे कीटाणु जैसे होते हैं। ये नजर भी नहीं आते। वैसे तो ये हमारे फेफड़ों पर हमला करती है, लेकिन इसके कारण हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में भी इन्फेक्शन हो सकता है। पता है, मुझे तो टीबी एक भूत जैसी लगती थी, बहुत डराती थी। फिर ना मुझे डॉक्टर अंकल ने समझाया कि टीबी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका पूरा इलाज हो सकता है। तब मैंने फैसला किया कि मुझे इस बीमारी से लड़ना ही होगा। इसके बाद 2 साल तक मेरा इलाज चला, क्योंकि ये वाली टीबी ना कुछ अलग तरह की थी। इतने दिन तक इलाज चलने के बाद भी मैंने तो सोच रखा था कि टीबी से लड़ती रहूंगी। इसकी दवा मुझे इतनी कड़वी लगती थी, फिर भी मुझे जूस के साथ ये दवा लेनी पड़ती थी। कभी कभी तो मुझे उल्टी भी होती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंकल कहते थे कि अगर मुझे ठीक होना है तो दवा लेनी ही पड़ेगी। मैं रोज अपनी टैबलेट खाती थी और बहुत सारा अच्छा खाना भी खाती थी। मैं रोती भी थी, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ कभी कभी, क्योंकि मैं बहादुर और स्ट्रांग हूँ ना। इसके बाद फिर कुछ ही दिनों में मैंने टीबी को हरा दिया। मैंने देखा कि ये भूत तो खुद ही डर कर भाग गया। मुझे बड़ा मजा आया। याद रखें, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपना ख्याल रखें तो इसके बैक्टीरिया को फैलने से रोक सकते हैं। आप सब लोग टीबी के लक्षण ध्यान से सुने और याद भी रखें। आपको बहुत सारी खांसी होगी जो 2 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होती। सीने में दर्द होगा, खांसी या बलगम में खून निकलेगा। इसके अलावा अगर खूब ठंड लगे, रात को पसीना आए, भूख ना लगे या बुखार आए और कमजोरी जैसे लगने लगे, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत डॉक्टर अंकल के पास जाना। याद रखें कि आप भी टीबी को रोक सकते हैं। हमेशा मुंह ढककर खांसे, और यदि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही टीबी की जांच करवाएं। टीबी की जांच एवं इलाज सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त में करी जाती है। टीबी का इलाज पूरा करना जरूरी है। और हाँ, एक बात और, किसी भी टीबी मरीज के साथ भेदभाव कभी नहीं करना, क्योंकि उन्हें भी तो प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। टीबी का इलाज हो सकता है, आप इस बीमारी को हरा सकते हैं, जैसे मैंने हरा दिया। अच्छा, चलती हूँ, होमवर्क का टाइम हो गया।

जय माता की। नवरात्रि के पांचवे दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मोड़ भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। जय माता की।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आज के खेत खलियान कार्यक्रम में हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका, खेती किसानी में उपयोग होने वाली नई नई तकनीकों के बारे में, साथ ही मधुमक्खी पालन योजना की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका की। किसान मित्रों, पर्यावरण से हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन बदले में हम क्या करते हैं? हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस पर्यावरण और इसकी अमूल्य संपदा का हनन करने पर तुले हैं। हमारे द्वारा की गई हर अच्छी और बुरी गतिविधि का असर पर्यावरण पर पड़ता है। इस प्रकृति में मानव ही सबसे अधिक बुद्धिशील प्राणी माना जाता है, इसीलिए पर्यावरण के संरक्षण में इसकी जिम्मेदारी सबसे अधिक बनती है, जिनमें खासकर हमारे युवा, क्योंकि युवा कल के भविष्य के पथ प्रदर्शक हैं और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और प्रदूषण के बढ़ते खतरे के साथ युवा पीढ़ी से सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पहले भी थी, किंतु परिस्थिति की नाजुकता देखते हुए आज ही आवश्यकता बढ़ रही है। पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। युवा पीढ़ी के पास पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का सामना करने और स्थायी समाधानों को बढ़ावा देने की क्षमता है। अब बात आती है कि हमारे जो युवा साथी हैं वो पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका कैसे अदा कर सकते हैं। तो युवा साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से उसका उपयोग करके पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। युवा साथी अपने दैनिक जीवन में स्थायी आदतें अपना सकते हैं, जैसे कि ऊर्जा की बचत करना, पानी का संरक्षण करना, साथ ही साथ कूड़े का प्रबंधन करना। और हमारे युवा साथी पर्यावरण परियोजनाओं में भाग ले सकते हैं, जैसे कि पेड़ लगाना, पार्कों की सफाई करना और पर्यावरण संबंधी अभियानों में शामिल होना। इसके अलावा युवा नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे युवा साथी पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही पर्यावरण संरक्षण में हमारे युवाओं की भूमिका की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं चमन कपासिया।
1: अरे मानस मानस

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे चमन कपासिया से ये उपदेश। किसान मित्रों, आज का जो युग है वो तकनीकी युग है। हर क्षेत्र में आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसी तरह हमारी जो खेती किसानी है उसमें भी आजकल नई नई तकनीकें आ गई हैं। इन तकनीकों का सीधे फायदा किसानों को मिल रहा है। ग्रीन हाउस खेती भी ऐसी एक तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से हम मौसमी और गैर मौसमी फसलों की खेती 12 महीने लगातार कर सकते हैं। ये तकनीक फसलों की रक्षा करने और उन्हें कीटों के साथ साथ बीमारियों से मुक्त रखने में सहायक है। ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करने के कई फायदे होते हैं। इनमें सब्जियां सर्दियों में पाले और गर्मियों में तेज धूप से सुरक्षित रहती हैं। इससे मौसम और कीट रोग जनित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसमें खेती करके फसलों को आवारा पशुओं से भी बचाया जा सकता है। वहीं ग्रीन हाउस में सब्जियों के लिए अनुकूल मौसम रहने से इनके खराब होने का खतरा भी नहीं के बराबर रहता है। इससे हमारे किसान भाइयों को फसल खराब हो जाने की वजह से होने वाला आर्थिक संकट नहीं झेलना पड़ता है। तो किसान मित्रों, आप भी ग्रीन हाउस खेती तकनीक का उपयोग करके बेमौसम की फसलें उगा सकते हैं और अधिक आमदनी ले सकते हैं। और किसान मित्रों, अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। किस्सा रहेगा हरिश्चंद्र तारामती का और गायक कलाकार हैं सुनील चौहान और टीना पटौदी। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे राजा हरिश्चंद्र और तारामती के किस्से से ये रागनी। गायक कलाकार थे सुनील चौहान और टीना पटौदी। किसान मित्रों, आपको बता दें कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों को खेती के साथ साथ ही पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान खेती के साथ साथ ये काम आसानी से कर सकते हैं। इसी क्रम में सरकार की ओर से किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। किसान भाई मधुमक्खी पालन करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और किसान मित्रों, आपको बता दें कि सरकार की ओर से मधुमक्खी पालन को मीठी क्रांति के तहत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किसान मित्रों, सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपना स्वरोजगार खोल सकते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसका प्रयोग आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के तहत आवेदन करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही बी कीपिंग स्वरोजगार से जुड़े हैं तो ये लोन आपके लिए काफी लाभदायक होगा। आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के जरिए अपने व्यवसाय को और अधिक बढ़ा सकते हैं तथा इसे उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। और किसान मित्रों, अब बात आती है कि मधुमक्खी पालन स्वरोजगार शुरू किया जाए तो कितना खर्चा आएगा। तो किसान मित्रों, यदि आप शुरू में 10 पेटी से मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं तो इसमें करीब 35,000 से 40,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। लेकिन जैसे जैसे मक्खियों की संख्या बढ़ने लगेगी, आपको मुनाफा अधिक होना शुरू हो जाएगा। आगे आपको सिर्फ मधुमक्खियों के लिए पेटियों की संख्या बढ़ानी होगी। इस तरह आप शुरुआती कुछ पैसा खर्च करके इससे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान मित्रों, आप भी खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, साथ ही साथ सरकार की जो ऋण योजना है उसका लाभ उठा सकते हैं और मधुमक्खी पालन से अपनी आमदनी और बढ़ा सकते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं लोकेंद्र सिंह और किस्सा रहेगा हीर रांझे का।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे लोकेंद्र सिंह से ये रागनी, किस्सा था हीर रांझे का। और इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कल फिर होगी इसी कार्यक्रम में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

जय माता की। नवरात्रि के पांचवें दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मोर भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। जय माता की।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 एफएम के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: भाई मैं हूं थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूं अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी

0: डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: दरोगा जी का आना हमारे घर पे कैसे हुआ? और फिर तो रुकया नहीं गया और सवाल करना शुरू कर दिया, क्यों दरोगा जी?
1: कहिए यादराम जी।
0: मैं इस भ्रम में हूँ, इस संशय में हूँ।
1: हाँ,
0: तुम्हारा आखिर हमारे घर पे आना क्यों हुआ, कारण बताओ।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
2: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
1: ओ, मुझे बुखार हो गया है।
2: अप्पा, टिंकू को बुखार हो गया है? तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू, क्यों हुआ बुखार?
1: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
2: ओ नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
1: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूँ तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: हाँ जल्दी आओ अप्पा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती, मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी, तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा है तैयार।

0: मरना नहीं मच्छरों से बचने के उपाय।
1: फिलहाल तारा अप्पा की ओर से बाय बाय।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: जय माता की। नवरात्रि के पांचवे दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। जय माता की।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं, उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम, जिसका नाम है हिंसा को नो, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं, दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
5: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कुशीनगर जिले का एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज, जन का रेडियो, मन का रेडियो। और रेडियो प्रज्ञा पर आपकी दोस्त वो होस्ट नव्या आपके बीच मौजूद है कार्यक्रम हिंसा को नो लेकर। जी हाँ, आज हम अपने एक अलग एपिसोड के साथ फिर मुखातिब हो रहे हैं आपसे। अभी तक आपने हमारे जितने भी एपिसोड सुने, जितनी भी कहानियाँ सुनी, उससे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता चला होगा कि हिंसा आखिर है क्या और इन बढ़ती घरेलू हिंसा को कैसे रोका जाए। लेकिन आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही। और ये घरेलू हिंसा भी अलग अलग रूप में किया जाता है, कभी दहेज के लिए, कभी बच्चे के लिए, कभी किसी बात को लेकर। परंपराओं की आड़ में हो रहे हिंसा को रोकने का प्रयास भी बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें परंपरा का नाम दे देते हैं और इन्हीं परंपराओं को तोड़ने के लिए स्मार्ट और रेडियो प्रज्ञा एक पहल कर रहा है, जिसमें आप सबसे ये कहा जाता है कि हिंसा सही नहीं, सुने समझे और चुप्पी तोड़े, तभी तो आप हिंसा को नो बोल पाएंगे। लेकिन आज की हमारी कहानी ये दर्शाती है कि अभी भी हम अपनी चुप्पी को तोड़ नहीं रहे हैं और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन इस कहानी का अंत क्या होगा? क्या हिंसा के खिलाफ आवाज उठेगी या आवाज दबेगी? चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। कहानी के पात्र हैं रंभा प्रतिभा, जो कि रंभा की सौतन है, उसकी सास और रंभा का भाई। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसकी शादी को 10 साल हो गए थे, पर उसे कोई बच्चा नहीं था। कई बार डॉक्टर को दिखाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार जब वो महिला कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई, तो उसकी अनुपस्थिति में उसकी सास और ननद अपने बेटे की शादी दूसरी लड़की से करा देती है। जब रंभा ससुराल वापस आती है तो सौतन को देखकर वो घबरा जाती है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो बहुत रोती है, लेकिन रोके भी क्या करती। धीरे धीरे इस सच्चाई को मानकर वो उसी घर में सौतन प्रतिभा के साथ रहने लगती है। घर की सारी जिम्मेदारी अब प्रतिभा को मिल चुकी थी और रंभा घर का सारा काम करती रहती है, बर्तन से चूल्हा चौका और भी सब कुछ। लेकिन रसोई घर में जाकर खाना बनाना या निकाल कर कुछ खा लेने का अधिकार नहीं था उसे। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, सिर्फ रंभा और प्रतिभा थी, प्रतिभा भी किसी काम में बहुत व्यस्त थी। इधर रंभा का पूरा दिन काम में निकल गया था, उसने पूरे दिन में कुछ खाया नहीं था। जब रंभा को भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने अपनी सौतन प्रतिभा से कुछ खाने को मांगा, लेकिन प्रतिभा रंभा की बातें सुनकर भी अनसुना कर देती। रंभा कुछ देर इंतजार करने के बाद किचन में जाती है और अपने लिए खाना निकाल कर लाती है। बस इतनी ही देर में प्रतिभा उसे देख लेती है और अपनी सास को बता देती है। उसकी सास रंभा को गाली देती है और कई सारे अपशब्दों का प्रयोग करती है। धीरे धीरे समय ऐसे ही निकल जाता है और ये समय यूं ही निकलता रहता है। रंभा के साथ उसकी ससुराल की किसी व्यक्ति का व्यवहार सही नहीं था। उसकी एक छोटी सी भी गलती पर कई दिनों तक उसे खाना नहीं दिया जाता था। रंभा इतनी कमजोर हो गई थी कि उसे कम दिखाई देने लगा था। और इधर प्रतिभा की शादी के कुछ महीने बाद वो गर्भवती हुई और उसे एक बच्चा हुआ। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा। जब वो 5 साल का हो गया तो उसकी माँ ने उसे ये सिखा दिया था कि रंभा को कुछ दिखाई नहीं देता है और वो कोई गलती करे तो उसे डंडे से मारना। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, प्रतिभा का बेटा बिल्कुल वैसा ही करता था। रंभा को उसकी सास हर बात पर डंडे से हाथ पर मारती थी और रंभा चुपचाप सहती थी। यहाँ तक कि वो अपने मायके में भी कुछ नहीं कहती थी। एक वक्त आया जब रंभा बुरी तरह बीमार हो गई, ना उसे दिखाई देता ना वो चल पाती। महज उम्र थी 35 साल, लेकिन वो 35 साल की उम्र में ही 60 साल की बूढ़ी लगने लगी। आसपास के लोगों ने जब देखा कि अब रंभा मर जाएगी, तो उन्होंने कहीं से उसके भाई का नंबर ढूंढ निकाला और उसे फोन कर बुलाया। जब भाई आया तो रंभा की सास ने झूठ बोल दिया कि वो हॉस्पिटल गई है। भाई दिन भर घर के बाहर पड़ा रहा। जब रात होने पर भी रंभा की कोई खबर नहीं मिली तो वो जबरदस्ती घर के अंदर गया और वहाँ देखा कि उसकी बहन अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बिना देर किए वो भाई अपनी बहन को हॉस्पिटल ले गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हॉस्पिटल आते आते रंभा की मृत्यु हो गई। और ये सब देखकर उसका भाई अंदर से टूट गया। वो ये सोच रहा था कि उसकी बहन ने उसे कभी भी कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसे इंसाफ चाहिए था। उसके भाई ने उस पर हुए हिंसा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और जांच पड़ताल के बाद रंभा के ससुराल के सभी लोग गिरफ्तार कर लिए गए, क्योंकि ये बात साफ हो गई थी कि रंभा के साथ हुए इस हादसे के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसकी अपनी फैमिली, अपने ससुराल वालों का ही हाथ है। घरेलू हिंसा करने के जुर्म में वो सभी जेल चले गए। बस इस बात की तकलीफ थी कि अगर रंभा ने पहले ही अपने साथ हो रहे हिंसा के खिलाफ एक्शन लिया होता, अपनी फैमिली को बताती या किसी की मदद लेती, तो आज वो जिंदा होती। ये कहें कि हमारे भारत में आए दिन इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं, इस तरह की घटनाएं होती रहती है जिसमें न जाने कितनी महिलाएं हिंसा को सहते हुए अपनी जान दे देती हैं, लेकिन फिर भी अपनी वो चुप्पी नहीं तोड़ती हैं। लेकिन आज हमें सुनने वाली उन महिलाओं से हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप में से कोई भी ऐसा हो जिनके साथ किसी भी तरह का हिंसा हो रहा हो, वो हिंसा की शिकार हो रही हो, तो आप डरे नहीं, आप आवाज उठाएं।
6: तो सुना आपने रंभा के साथ हुए हिंसा की कहानी। कहानी में आपने सुना कि रंभा निःसंतान थी और उसकी सास अपने बेटे की दूसरी शादी करा देती है, जिसके बाद प्रतिभा को घर की मालकिन बना दिया जाता है और रंभा एक नौकरानी की जिंदगी जीने लगती है। धीरे धीरे उसके खाने पीने में भी कमी कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है और कुछ दिनों में उसे दिखाई देना भी बंद हो जाता है और कमजोरी इतनी बढ़ जाती है कि बिस्तर से उठ पाना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और जब इस बात की खबर आस पड़ोस के लोगों को लगती है तो वो कहीं से तो रंभा के भाई का नंबर ढूंढ निकालते हैं और उसे फोन करके बुला देते हैं। जब भाई आता है तो वो अपनी बहन की इस बुरी हालत को देख काफी चिंतित होता है, उसे हॉस्पिटल भी ले जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। उसकी बहन के साथ क्या हुआ था उसे बहुत अच्छे से समझ आ जाता है और वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और उसके ससुराल वालों के खिलाफ हिंसा की शिकायत दर्ज कराता है और उन्हें सजा दिलवाता है। लेकिन ये सिर्फ रंभा की कहानी नहीं है, ऐसी कहानियाँ हमारे समाज में बहुत सी महिलाओं की है जो ना तो अपनी तकलीफ किसी से कह पाती हैं और ना ही इसके खिलाफ आवाज उठा पाती हैं। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिसके साथ हिंसा हो रही है सिर्फ वही आवाज उठाएगा। अगर आपके सामने ऐसी कोई घटना है या हो रही है तो आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकती हैं। आप अपने समाज की बुराइयों को रोकने में सक्षम हैं और इसके लिए हमारी सरकार भी हमारी महिलाओं के साथ है। अगर कोई महिला कमजोर है और हिंसा जैसी बातों से बिल्कुल अनजान है तो आसपास के लोगों का ये फर्ज बनता है कि आप उस महिला को इस बात से रूबरू कराएं कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो हिंसा है और उसे रोकने का उपाय भी जरूर बताएं। अगर वो सहमत है तो उसका साथ दें, ना कि देख के चुपचाप अपने घर में चले जाएं, क्योंकि पता है ना इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा होता है। और बाकी आप सभी को जागरूक करना हमारा काम है। हमने अपने हर एपिसोड में आपको बताया है कि हिंसा क्या है और इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, इसी तरह अगर सारी महिलाएं एक साथ एकजुट होकर हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएंगी तो हिंसा हमारे समाज से जड़ से खत्म की जा सकती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सभी महिलाएं जागरूक बनें और एक दूसरे का साथ दें, तभी तो हिंसा को जड़ से उखाड़ फेंकने का हमारा यह मिशन पूरा हो पाएगा। तो हमें उम्मीद है कि हमारी ये वाली कहानी आप सभी को समझ में जरूर आई होगी और हमारे द्वारा दी हुई जानकारी का आप सभी लाभ भी उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। और हाँ, अगर आपके आसपास ऐसी कोई भी घटना हुई है या हो रही है तो आप इसकी जानकारी हम तक भी पहुंचा सकती हैं। नंबर हमारा है 91-173-19-819। तो अब हिंसा को सहे नहीं, इसके खिलाफ मिलकर आवाज उठाएं और ये कहें कि सुनो समझो चुप्पी तोड़ो, बोलो हिंसा को नो।
5: आपके शहर में ही आपके लिए बहुत सारे ऐसे हेल्पलाइन नंबर हैं जहां आप कॉल करके अपने साथ हो रहे हिंसा की जानकारी दे सकती हैं और अपनी मदद के लिए आप इन हेल्पलाइन नंबरों का इस्तेमाल जरूर करें। दस नब्बे या 112 ये नंबर डायल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं या अपने क्षेत्र के महिला थाना या वन स्टॉप सेंटर या फिर महिला एवं बाल विकास अधिकारी से सहायता ले सकती हैं। इसके अलावा आप घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अपने साथ हो रहे हिंसा की इस कहानी का अंत कर सकती हैं। अब ये आप डिसाइड करेंगी कि आप हिंसा का शिकार बनना चाहती हैं या बंद करना चाहती हैं। आपकी एक आवाज न जाने कितनी महिलाओं को जिंदगी देगा। तो पहले सुनिए, समझिए, फिर वक्त है चुप्पी तोड़ने का। तो चुप्पी तोड़िए और बोलिए हिंसा को नो। आज की इस कहानी से हमें उम्मीद है कि जैसा हमने सोचा था कि आप समझेंगी कि हिंसा क्या है और इसे कैसे रोकना है। और हम सब यही चाहते हैं कि आप हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं। हिंसा को नो का ये एपिसोड प्रसारित किया जा रहा है। फिलहाल ये एपिसोड यहीं खत्म होता है और मिलेंगे आपसे नए स्टोरी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक इंतजार हमारा।
0: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज़, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: जय माता की। नवरात्रि के पांचवे दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मोर भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। जय माता की।

हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: ओले ओले ओले ओ शोनक। हेलो, कौन?
3: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर। आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
4: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
3: जल्द मिलते हैं।
2: हेलो हेलो हेलो,
5: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
6: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
8: मैं एक और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूँ, जैसे नासिर हुसैन। वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम में मेरे साथ शॉर्ट डिवीजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिवीजन करूंगा। तो कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिवीजन करके देता हूँ, तो पूरा शॉर्ट डिवीजन बताते थे और उस शॉर्ट डिवीजन से गाना निकलता था।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
5: शारदा। परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
6: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
7: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
8: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
9: चंचल चंचल

0: गर्भ के चौथे महीने से प्रसव के 6 महीने बाद तक हर माँ ले रोजाना संतुलित भोजन के साथ आयरन की एक लाल गोली। एनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सही पोषण, देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
1: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
0: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।

जय माता की। नवरात्रि के पांचवें दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मोर भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। जय माता की।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको नमस्कार श्रोताओ।
3: नमस्कार, मैं विमलेश।
2: और मैं अजीत। तो श्रोताओ, इसी तरह सुनते रहिए हमारा आपका प्यारा कार्यक्रम उमंग,
3: और बने रहिए लगातार इसके संग।
2: वाह,
3: धन्यवाद साथियों आपके उत्तरों और संदेशों के लिए भी।
2: तो श्रोताओ, आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार। और इस सुविचार को भेजा है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से हमारे प्रिय श्रोता राष्ट्रपाल गजभिये जी ने।
3: और वो लिखते हैं, जब सोच में मोच आती है
2: तब हर रिश्ते में खरोंच आती है।
3: सोचकर बोलना या बोलकर सोचना, मात्र दो शब्दों के आगे पीछे के इस्तेमाल से अर्थ और परिणाम बदल जाते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर है ये राष्ट्रपाल जी, और आशा है कि इस सुविचार के द्वारा हमारे सभी श्रोताओं को बहुत प्रेरणा मिली होगी
3: जी।
2: तो श्रोताओं, आशा है कि ये विचार आपको भी पसंद आया होगा।
3: तो अब आइए जरा जानते हैं कि हमारे किन श्रोताओं ने भेजे हैं संदेश और प्रश्नों के उत्तर।
2: संबलपुर कांकेर छत्तीसगढ़ से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: डोंडी लोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया।
2: पलारी रोहासी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू, नंदिनी साहू, मनीष साहू और मयंक साहू।
3: गांव खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर से कानाराम चौहान।
2: और गिर्रा पलारी छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार साहू, आशीष कुमार साहू
3: जी।
2: तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं अब आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है,
3: भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा गया है।
2: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
3: भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा गया है।
2: और भेज दीजिए उत्तर हमारे चिर परिचित नंबर 8800440559 पर। तो आइए श्रोताओ, अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है द लायन एंड द बफेलोज।
4: वंस अपॉन अ टाइम अ लायन यूज्ड टू रोम अराउंड अ फील्ड। There were four buffaloes grazing in the field. The lion tried to attack them many a time, but the buffaloes used their horns together to fight back. The lion had to run away to save his life. The buffaloes together chased the lion away. One day, the buffaloes quarreled among themselves. They did not go together to graze in the field. Each one went off to pasture alone in a separate corner of the field. The lion watched them carefully and waited for a day or two. Then the lion attacked them one by one and ate all four of them.

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: आइए अब सुनते हैं आज का दूसरा कार्यक्रम।
0: क्या तुम हो मेरी माँ?
3: भाई आज की कहानी है एक मुर्गी और उसके छोटे से चूजे की। एक थी मुर्गी। मुर्गी ने अंडा दिया। कुछ दिन बाद अंडे में से निकला एक छोटा सा चूजा, मुर्गी का बच्चा, जानते हो? मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? शाबाश, चूजा। वो चूजा बहुत प्यारा था। अंडे से बाहर निकलकर उसने इधर देखा उधर देखा। चारों तरफ बहुत सारी चीजें थीं और खूब शोर था। सब अपना अपना काम कर रहे थे। चूजा अपनी मां के पास जाना चाहता था, पर उसे अपनी मां कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। ढूंढने निकल पड़ा वो अपनी मां को।

0: चलते चलते उसे एक बकरी दिखाई दी।
1: ले, ले,
0: चूजे ले, को देखते ही बकरी बोली,
1: मैं।
0: तब चूजा बोला,
2: लगता है यही है मेरी माँ। चलो इससे पूछ लेता हूँ, क्या तुम हो मेरी माँ?
1: मैं।
2: नहीं नहीं नन्हे चूजे, नहीं। देखो मेरे तो चार पैर हैं, तुम्हारी माँ के तो सिर्फ दो ही पैर हैं।
1: मैं।
2: मेरे तो पंख भी नहीं है, तुम्हारी माँ के तो पंख भी हैं।
3: अच्छा, मेरी माँ के दो ही पैर हैं, पंख भी है।
2: हाँ, अब ढूंढ लूंगा उसे।

0: चलते चलते चूजे को एक झाड़ी के पास मैना दिखाई दी। हां तो बताओ कौन दिखाई दी? बिल्कुल ठीक, मैना। मैना मजे से गाना गा रही थी। नन्हा चूजा मैना को देखकर बोला,
1: हाँ तुम ही हो मेरी माँ। तुम्हारे दो पैर है, पंख भी है।
0: इस पर मैना ने कहा,
1: नन्हे चूजे मैं मैं कैसे हो सकती हूँ तुम्हारी माँ? मैं तो मैना हूँ। तुम्हारी माँ तो मुझसे काफी बड़ी है।
2: अच्छा।
0: और भाई ये सुनकर चूजा आगे बढ़ा।

0: अभी कुछ ही दूर गया था कि वो खुशी से चिल्लाया,
1: मिल गई मिल गई। मेरी माँ मिल गई। तुम मैना से बड़ी हो, तुम्हारे दो पैर भी हैं, पंख भी हैं, बस तुम ही हो मेरी माँ। क्वाक क्वाक। नहीं नहीं नहीं नन्हे चूजे, नहीं, मैं तो बत्तख हूँ, मैं तो बोलती हूँ क्वाक क्वाक क्वाक क्वाक, और तुम्हारी माँ करती है कुकुक कुकुक कुकुक कुकुक कुकुक।
2: अच्छा, तुम भी मेरी माँ नहीं हो?
0: हाँ भाई, अब क्या करे चूजा, सोचने लगा कहाँ गई मेरी माँ। मेरी माँ कहीं ना कहीं तो जरूर होगी।

0: तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने देखा उसकी तरफ कोई भागता हुआ आ रहा है। पास आने पर चूजे ने देखा मैना से बड़ी, दो पंख, दो पैर वाली कुकु कुकु करती वो उसके पास ही आ रही है। और भाई चूजा जल्दी से जाकर उससे लिपट गया।
1: मैं पहचान गया। तुम ही हो ना मेरी माँ,
0: मुर्गी बोली।
1: कुक कुक कुक कुक कुक। हाँ हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारी माँ। कुक कुक कुक कुक कुक। तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना।
0: भाई चूजा बहुत खुश हुआ अपनी माँ से मिलकर।
2: क्या तुम हो मेरी माँ, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्या तुम हो मेरी माँ। आशा है कि आपको ये जरूर पसंद आया होगा।

0: और अब सुनते हैं एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम, कौन है भारतवासी।
1: भारत विविधताओं का देश है। समय समय पर भारत में अनेक देशों से लोग आते रहे हैं, जिनमें से कुछ भारत में ही सदा के लिए बस गए। ये लोग कैसे भारत की मूल सभ्यता और संस्कृति में रच बस गए और कैसे इन्होंने यहाँ के खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाजों आदि पर अपना प्रभाव डाला, देखते हैं इस कविता में।

0: भारतवासी।
1: अभी आप सुन रहे थे ये गीत। विषय संयोजन, आलेख एवं वाचन डॉक्टर इंदु कुमार, संगीतकार हरभजन सिंह, गायन स्वर अनुजा विसारिया और विनीत, ध्वन्यांकन बटी लैंगडिंगडो, निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल, निर्देशन एवं निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली। कौन है भारतवासी, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: जय माता की। नवरात्रि के पांचवें दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मोर भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। जय माता की।
1: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: नहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चे मर जाओ।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं। इससे

0: हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: न छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं, कहीं आपको बिगड़ी हुई टीबी यानी एमडीआर टीबी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

जय माता की। नवरात्रि के पांचवें दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मोर भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। जय माता की।

धरती मेरी धरती। लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 29वीं कड़ी मौसम की भविष्यवाणी। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने सुना मौसम अच्छा कब और कैसे होता है। हर मौसम बनता है विभिन्न कारकों की आपसी जटिल क्रियाओं से, जिनमें शामिल है हवा की गति, दबाव, तापमान, बादलों की उपस्थिति, नमी और वर्षा इत्यादि। तो लीजिए आगे सुनते हैं विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 29वीं कड़ी मौसम की भविष्य।

0: ये दरवाजे खिड़की बंद कर देना, लगता है तूफान आने वाला है।
1: अच्छा अभी करती हूँ।
0: अरे मानव तू कहाँ चला? आप
1: तूफान को देखने?
0: अरे ये तूफान क्या कोई जानवर है जो तुझे दिखाई दे जाएगा? हवा तेज हो जाए तो तूफान का रूप ले लेती है, तब हवा की आवाज साए साए आती है, पेड़ उखड़ जाते हैं, उनकी डाले टूट जाती है। हाँ
2: हाँ मम्मी, हवा की आवाज तो आ रही है।
0: ए सृष्टि बेटा, जल्दी से बाहर सूख रहे कपड़े उतार ले वरना सारे के सारे उड़ जाएंगे। हाँ।
1: अच्छा मम्मी। दीदी बाहर का नजारा कैसा है?
3: गिर आई काली घटा मतवारी,
4: तो सावन की आई बहार।
0: क्या ऊटपटांग गा रहे हो तुम लोग? अभी तो मई का महीना है, सावन कहाँ से आ गया अभी?
2: पर मम्मी गाना तो ऐसा ही है, क्या केवल सावन में ही घटा आती है क्या?
5: हाँ मम्मी, एक गाना मैंने भी सुना है, ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के।
2: मम्मी मेरे गाने में काली घटा आती है तो सावन आता है, और दीदी तुम्हारे गाने में काली घटा आती है तो ठंडी हवा आती है। मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि ठंडी हवा आई या नहीं।
0: अरे बुद्धू, हवा में उड़ जाएगा, बाहर जाएगा तो भीतर आके बैठ जा। और हाँ सृष्टि, तू जरा अपनी बुआ जी के घर फोन लगाना और फोन करके पूछ कि विवेक और तुम्हारे पापा अभी वहाँ से निकल पड़े या नहीं।
5: हाँ जी मम्मी।
0: और सुन, अगर अभी नहीं निकले ना तो कहना अभी वो वहीं रहे, बाहर बहुत तेज आंधी चल रही है, हो सकता है बारिश भी आ जाए।
5: हाँ हाँ ठीक है।
2: मम्मी बाहर से ठंडी हवा आ रही है, अब तो बारिश जरूर आएगी।
0: ओहो ये तो बेमौसम की बरसात है, अभी तो बरसात आने में देर है।
2: लो मम्मी, आप तो कह रही थी कि बरसात आने में देर है और बारिश होने भी लगी। मम्मी मैं बारिश में जाके नहा लूं?
0: मम्मी प्लीज ना। मम्मी जाना मानव, क्या करता है तू, तंग मत कर। अरे सृष्टि बाहर से कपड़े उतारेगी नहीं?
1: हाँ मम्मी।
0: आज मौसम को भी पता नहीं क्या हो गया, अच्छी खासी धूप निकली थी, अचानक आंधी तूफान के साथ बारिश होने लगी।
2: मम्मी मैं भी अखबार में देखता हूँ कि आज मौसम विभाग ने मौसम के बारे में क्या लिखा है।
0: अरे मौसम वालों की तो भली कही, जब वो कहते हैं आसमान साफ रहेगा तो बादल छा जाते हैं, जब वो कहते हैं बारिश होगी तो तेज गर्मी और धूप से हम बेहाल हो जाते हैं। अरे सृष्टि बेटा देखना दरवाजा खोल, कौन है?
2: हाँ जी मेरा दोस्त बबलू होगा, वो मुझे बारिश में नहाने के लिए बुलाने आया होगा।
5: तेरा अंदाजा हमेशा की तरह आज भी गलत है मानव, ये तो पापा और विवेक भैया हैं।
6: अरे भाई किसका अंदाजा गलत है?
2: पापा, मौसम विभाग का और मेरा।
0: आप लोग तो बिल्कुल ठीक है जी। रुकिए मैं तौलिया लेकर आती हूँ, ये लीजिए।
7: मम्मी बाहर ना इतनी तेज आंधी थी, पहले तो हम एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, पेड़ तो मानो चरमराने लगा, लगता था टूट कर गिर पड़ेगा। फिर हमने सोचा भाग लो घर ही चलते हैं।
6: अरे अब अपनी मम्मी को कहानी सुनाते रहोगे या पहले एक कप गर्मा गर्म चाय पी लें? क्यों वसुधा, अब चलो इस तूफान से मौसम कुछ तो ठंडा हुआ है ना।
0: सुनिए जी, दीदी के यहाँ वो सब तैयारियाँ ठीक चल रही है ना? शादी को तो कुछ ही दिन रह गए हैं।
7: पापा अगर शादी वाले दिन भी अचानक ऐसा मौसम हो गया तो?
6: अरे तो क्या, शामियाना वाटर प्रूफ लगाना पड़ेगा और क्या।
7: तब तो शामियाने का बजट और बढ़ जाएगा,
2: फूफा जी की जेब और हल्की हो जाएगी।
6: वैसे कहता तो ठीक है भाई, इस मौसम के मिजाज का हमारे मिजाज पर भी असर पड़ता है, यानी पड़ रहा है।
7: तभी तो हमारा दिल अब चाय और पकोड़े खाने को।
6: क्या बात, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीनी, मतलब मेरे पेट की बात छीनी।
2: तो मम्मी कुछ बनाओ ना गर्मा गर्म।
5: मेरा भी दिल कर रहा है, चलो मैं आपकी मदद करती हूँ।
0: डब्बा और कढ़ाई तो देना।
2: क्या हो रहा है?
5: ये लो मम्मी।
2: चूल्हे पर रखी है कढ़ाई, मम्मी और दीदी को अब नहीं लग रहे हैं गर्मी के चाटे, तभी तो वो बना रही है गर्मा गर्म पराठे।
5: काफिया तो है तेरा एकदम ठीक, पर अंदाजा नहीं है तेरा सटीक।
2: क्यों, क्या पराठे नहीं बन रहे?
0: क्या कढ़ाई में कोई पराठे बनाता है बुद्धू, मैं तो आलू की कचौरियाँ बना रही हूँ।
5: मानव तू जरूर मौसम वैज्ञानिक बनेगा।
7: अरे भाई कौन मौसम वैज्ञानिक बनेगा?
5: मानव।
7: क्यों?
5: क्योंकि इसका अंदाजा मौसम वैज्ञानिकों की तरह अक्सर गलत होता है।
0: मुझे भी ऐसे ही लगता है, चूल्हे पर कढ़ाई रखी है फिर भी कहता है पराठे बना रही हूँ।
7: अरे भाई इसमें मौसम वैज्ञानिकों का क्या दोष, मानव ने सभी बातों का अवलोकन गौर से नहीं किया और निष्कर्ष निकाल लिया तो अंदाजा तो गलत होगा ही ना।
0: ये गलतियाँ ना बाद में निकालना, लो पहले गर्म कचौरियाँ खाओ।
7: हाँ
2: भैया मुझे भी दो।
7: लेना मानव। अच्छा आजा मानव, पापा के साथ बैठ कर खाएंगे। मम्मी सृष्टि आप लोग भी जल्दी बना कर आ जाओ।
8: Thank you.
6: खाता क्यों नहीं? एक कचौरी हाथ में लेकर क्या घुमा रहा है?
7: पापा मुझे पूरा यकीन है इसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है।
6: हाँ हो सकता है।
2: भैया मैं सोच रहा हूँ कि ये आलू की कचौरी का आकार अगर 2.5 गुना बढ़ जाए तो क्या ये पराठा नहीं हो जाएगा?
6: पराठा या कचौड़ी? अरे पहले तू खा ले मानव, फिर बता कि तेरे दिमाग में चल क्या रहा है। खा ले, खा ले, पहले खा ले।
0: अरे मानव तू खाता क्यों नहीं रे?
5: ये लो और कचौड़ियाँ।
6: अरे भाई ये तो कचौड़ी और पराठे के चक्कर में पड़ा है।
0: क्या चक्कर है भाई?
2: मम्मी अभी आप कह रही थी ना कि जब हवा की गति तेज हो जाती है तो आंधी तूफान बन जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये कचौरी 2.5 गुना बढ़ जाए तो पराठा नहीं बन जाएगी।
0: नहीं, कचौरी कचौरी है और पराठा पराठा, क्योंकि दोनों को बनाने का ढंग अलग है और दोनों का स्वाद अलग है।
7: मानव तेरे दिमाग में क्या है साफ साफ बता देना, हो सकता है मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं।
2: भैया आप तो रहने ही दो, मम्मी अगली बार जब बारिश होगी ना तो आप पराठे बनाना और वो भी आलू के।
0: बना दूंगी पराठे।
2: तो अगली बारिश कब होगी और कब मुझे पराठे मिलेंगे? भैया बताओ ना अगली बारिश कब होगी?
6: विवेक मानव मजाक मजाक में तुमसे पूछ रहा है कि आने वाले दिनों के मौसम का अंदाजा कैसे लगाएं?
5: हाँ पापा, ये क्या हम सभी आने वाले मौसम का हाल जानना चाहते हैं, क्योंकि मौसम का हर समय हमारी हर चीज पर कुछ ना कुछ असर जो होता है।
0: विवेक लगता है तुम्हारी परीक्षा होने वाली है, सृष्टि भी कुछ गंभीर दिखाई दे रही है।
6: अरे क्यों ना हो वसुधा, मौसम और हमारा हर समय हर पल का वास्ता जो है, अगर आज हमें मौसम का पूर्वानुमान होता तो शायद हम घर से बाहर ही ना जाते, बाहर ना जाते तो भीगते नहीं,
0: और भीगते नहीं तो गर्मा गर्म कचौरियाँ और गर्म चाय नहीं मिलती।
6: ये बात भी सही।
7: देख मारो तू जानना चाहता है ना, तो आज का अखबार उठा और मौसम वाला कॉलम देख, और देख उसमें क्या लिखा है।
2: अच्छा भैया अभी लाता हूँ।
6: भैया
2: इसमें तो कुछ आंकड़े लिखे हैं और एक मानचित्र भी है, और लिखा है कि मौसम में बदलाव नहीं आंकड़े हैं अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान और अपेक्षित आर्द्रता।
7: मानव मौसम को समझना तथा आने वाले समय के मौसम का पूर्वानुमान लगाना आज एक पूर्ण विज्ञान है, जिसे अंग्रेजी में मीटरोलॉजी यानी मौसम विज्ञान कहते हैं, और उससे जुड़े वैज्ञानिकों को मीटरोलॉजिस्ट यानी मौसम विज्ञानी।
2: अच्छा भैया एक बात बताओ, जब मौसम विभाग नहीं था और मौसम वैज्ञानिक भी नहीं थे तो लोग मौसम का अंदाजा कैसे लगाते थे?
6: गुड क्वेश्चन।
0: अरे मानव हमारे यहाँ कितनी ऐसी कहावतें मुहावरे और लोकोक्तियां हैं जो मौसम से संबंधित हैं। हमारी दादी उसी से अंदाजा लगाती थी।
5: हाँ मम्मी आपने एक दिन बताया था जब चिड़ियां रेत में नहाएं या चींटियां अपने अंडों को लेकर बाहर निकलने लगे तो समझो बारिश का मौसम निकट है।
7: बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि, बिल्कुल ठीक। हमारे पूर्वज आकाश के रंग, हवा की दिशा, आकाश में बादलों की स्थिति और रंग देखकर मौसम की भविष्यवाणी करते थे। इस ज्ञान को लोगों ने कहावतों और मुहावरों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया।
6: जैसे मैंने तुम तक पहुंचाया।
2: तो क्या वो अनुमान ठीक होते थे?
7: कभी सही तो कभी गलत।
2: ऐसा क्यों?
7: तुम जानते ही हो मानव कि हमारे आसपास वायुमंडल है, उसमें जो बदलाव होते हैं वही हमारे मौसम को प्रभावित करते हैं।
5: और मैं ये भी जानती हूँ कि मौसम संबंधी प्रक्रिया केवल स्ट्रेटोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल में ही होती है।
2: दीदी तब तो हमें स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर ही रहना चाहिए, वहाँ मौसम हमें कभी परेशान नहीं करेगा।
5: अरे बुद्धू तब सांस कैसे लेगा तू, वहाँ इतनी ऑक्सीजन कहाँ से आएगी?
7: हमारा वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण है।
2: पर भैया मैंने तो सुना है कि धरती का वायुमंडल कई चादरों का बना हुआ है और हर चादर अलग अलग है, जैसे मेरे पलंग की चादर लाल तो दीदी की नीली।
7: हाँ मानव कुछ ऐसा ही समझो, पर हर चादर के गुण अलग अलग होते हैं।
2: ऐसा क्यों भैया?
7: मानव इसके लिए हमें गैसों के कुछ विशेष गुणों को समझना पड़ेगा।
5: जैसे गैसें दबाव डालती हैं, गर्म होकर फैलती हैं तो उनका घनत्व कम हो जाता है और वो ऊपर उठती हैं।
7: बिल्कुल ठीक है सृष्टि, ठीक उसी प्रकार वायुमंडल की निचली परत जो धरती के संपर्क में आती है वो गर्म हो जाती है और उसके अणु एक दूसरे को धकेलते हैं, इससे वो फैल जाते हैं और तब उनका घनत्व कम हो जाता है और तब वो परतें हल्की हो जाती हैं और तब उनके द्वारा डाले जाने वाला दबाव भी कम हो जाता है।
2: दबाव कम होने से क्या होगा?
5: तब तो आसपास की ठंडी हवा गर्म वायु को धकेलती होगी।
7: बिल्कुल ठीक सोचा सृष्टि, और गर्म वायु ऊपर उठ जाती है
5: और उसके स्थान पर ठंडी हवा आ जाती होगी।
2: दबाव कम तो ठंडी हवा, यानी सुहाना मौसम।
7: अरे वाह मानव, ऐसा ही कुछ कुछ वैज्ञानिक भी करते हैं। वो पूर्वानुमान कई कारकों के आधार पर लगाते हैं,
5: और वो कारक हैं तापमान, हवा का दाब, दिशा तथा आर्द्रता यानी नमी।
2: पर भैया, ये नमी कहाँ से आती है?
7: अरे मानव, धरती के तिहाई भाग में पानी ही तो है। सूर्य की गर्मी से पानी भाप बनकर वायुमंडल में पहुँचता है।
2: अच्छा, अब मैं समझ गया।
7: और मानव जानते हो, आज हमारे पास इन सभी कारकों को नापने के उपकरण हैं, जैसे थर्मोमीटर, एरोमीटर, अनीमोमीटर, यानी आंकड़े जितने सही और सटीक होंगे हमारे अनुमान उतने ही सही होंगे।
2: तो क्या हमारे मौसम वैज्ञानिक सही और सटीक आंकड़े इकट्ठे नहीं करते तो उनके अनुमान ठीक नहीं होते?
7: मानव, इस सवाल का जवाब देना तो मुश्किल है।
6: अरे भाई, कौन से सवाल का जवाब मुश्किल है,
7: आप ही बता दो।
5: अरे पापा, याद आया, आपके मित्र है ना डॉक्टर कार।
7: हाँ?
5: वो भी तो मौसम वैज्ञानिक है।
2: वही मौसम भवन वाले ना दीदी?
5: हाँ हाँ, वही मानव। अब पापा, आप उनको फोन करो ना, हम उनसे मिलना चाहते हैं।
7: हाँ हाँ पापा, मैंने सुना है अब मौसम विभाग में एक नया सुपर कंप्यूटर आया है, मैं उसे देखना चाहता हूँ।
6: तुम लोग जाना चाहते हो?
5: हाँ।
6: अरे तो मैं अभी फोन करके उससे कल शाम के लिए तुम सबके मिलने का समय फिक्स कर देता हूँ।

0: जा, हम आने
1: वाले। देख ये रहा मौसम केंद्र, और वो देख डॉक्टर कार हमारा इंतजार भी कर रहे हैं।
2: अरे आ जाओ बच्चों, कैसे हो विवेक, कैसे हो मानव, कैसे हो सृष्टि?
3: नमस्ते अंकल।
2: नमस्ते नमस्ते, आओ।
0: दीदी ये मौसम भवन है?
2: हाँ भाई, यही मौसम भवन है और ये हमारा दफ्तर है। आओ भीतर चलें।
0: अरे दीदी वो देखो वहाँ वो दो लोग ना गुब्बारे उड़ा रहे हैं, कितना बड़ा गुब्बारा है, कितना मजा आ रहा होगा ना इनको।
2: अरे भाई मानव, ये मजे के लिए नहीं है, ये तो उसे ऊपर के वायुमंडल का हालचाल जानने के लिए उड़ा रहे हैं।
0: ऊपर के वातावरण का हालचाल?
2: हाँ मानव, ये मौसम केंद्र है, हम यहाँ वायुमंडल से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करते हैं।
1: अंकल इन गुब्बारों में क्या है?
2: विवेक इनमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है जिनसे हम ऊपरी वायुमंडल का तापमान, दबाव, हवा की दिशा और नमी से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करते हैं। हमारे देश में मौसम संबंधी आंकड़े 550 से अधिक केंद्रों पर इकट्ठा किए जाते हैं।
1: अच्छा,
0: तो क्या हर केंद्र से गुब्बारे भी छोड़े जाते हैं?
2: अरे नहीं नहीं, ऐसा केवल 36 केंद्रों से दिन में दो बार किया जाता है। विश्व के अन्य देशों में भी ऐसे केंद्र हैं जिनसे हम आंकड़ों का आदान प्रदान करते हैं।
0: अंकल उस बाग में जो यंत्र लगा है वो रेन गॉज यानी वर्षा मापक यंत्र है ना?
2: बिल्कुल सही सृष्टि, और ये यहाँ बैरोमीटर है वायु के दाब के लिए, और ये हाइग्रोमीटर हवा में नमी के लिए,
0: और ये है थर्मामीटर तापमान नापने के लिए।
1: अंकल एनीमोमीटर भी तो होगा हवा की गति नापने के लिए?
2: हाँ हाँ विवेक, वो देखो वो रहा, और ये जो जोकर की टोपी जैसा ये है ना, ये वायु दिशा सूचक है।
0: तो आप यहाँ केवल आंकड़े इकट्ठा करते हैं?
2: हाँ मानव, हमारे पास मौसम संबंधी पिछले 100 वर्षों से अधिक के आंकड़े हैं।
0: पर अंकल आप इन आंकड़ों का करते क्या हो?
2: अरे मानव यही तो हमारा कच्चा माल है मौसम का पूर्वानुमान लगाने का।
0: कच्चा माल?
2: बिल्कुल भाई, मुझे आपके पिताजी ने बताया था कि आप लोग कल बेमौसम की बरसात से परेशान हो गए थे, और आज मौसम केंद्र में ये जानने आए हैं कि आने वाले मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है। तो चलो फिर भीतर मेरे कमरे में चलते हैं, वहां पर डॉक्टर प्रशांत माली भी आपसे मिलने को उत्सुक हैं।
0: चलो
1: चलो
2: चलो, आओ बच्चों आओ। ये हैं डॉक्टर प्रशांत, और डॉक्टर प्रशांत ये मेरे मित्र सूर्य प्रकाश जी के बच्चे हैं। ये है विवेक, ये सृष्टि, और ये मानव।
0: नमस्ते
4: नमस्ते नमस्ते भाई। भाई मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके सवालों के जवाब दूं।
2: वैसे बच्चों एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मौसम के पूर्वानुमान लगाने का तरीका आज भी लगभग वैसा ही है जैसा कि पहले था।
4: हाँ, आज केवल अंतर इतना है कि हमारे पास आंकड़े एकत्र करने के सही उपकरण व तकनीक है जिससे पूर्वानुमान अधिक सटीक प्राप्त होते हैं।
2: पर मौसम का पूर्वानुमान लगाना आज भी लगभग टेढ़ी खीर है, क्योंकि मौसम को प्रभावित और नियंत्रित करने वाले सभी कारक क्या हैं और वो आपस में कैसे और क्या क्रियाएं और अभिक्रियाएं करते हैं, इसकी पूर्ण जानकारी अभी हमारे पास नहीं।
1: तो अंकल जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ती जाएगी और हमारी तकनीकें सुधरती जाएंगी, हमारे पूर्वानुमान सटीक होते जाएंगे, है ना?
4: बिल्कुल ठीक कहा तुमने विवेक। जैसे प्राचीन काल से मध्य काल तक मौसम के पूर्वानुमान के लिए लोग संतों और महात्माओं से पूछते थे, क्योंकि मौसम का नियंत्रण व उसमें आपस में होने वाली क्रियाओं से वे अनजान थे।
0: और आज वही कार्य मौसम वैज्ञानिक करते हैं।
2: हाँ मानव, परंतु आज हम मौसम का पूर्वानुमान वैज्ञानिक तरीके से लगाते हैं, हम भौतिकी व रसायन विज्ञान के कई सिद्धांतों का भी उपयोग करते हैं।
4: और बच्चों मौसम को समझने के लिए भौतिकी के सिद्धांतों का उपयोग करने वाले पहले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे एडमंड हेली।
1: अंकल वही हेली जिन्होंने उस धूमकेतु की खोज की थी जो हर 86 वर्षों में पृथ्वी के निकट आता है?
4: हाँ विवेक वही हेली, और पता है वो न्यूटन के भी अच्छे मित्र थे।
2: भाई बच्चों जैसे जैसे वायुमंडल के बारे में हमारी जानकारी बढ़ रही है, हमारे तरीकों में भी बदलाव आता जा रहा है।
1: तभी अंकल आज हम मौसम के आंकड़े न केवल पृथ्वी की सतह से बल्कि वायुमंडल के भिन्न भिन्न स्तरों से भी लेते हैं।
4: और आंकड़ों के लिए हम समुद्री जहाजों, वायुयानों और रॉकेटों का भी उपयोग करते हैं।
0: लेकिन अंकल पृथ्वी का वायुमंडल तो एक है, वो तो देश की राजनीतिक सीमाओं को नहीं मानता। मुझे लगता है मौसम का सही पूर्वानुमान हम तभी लगा सकते हैं जब हमें समुचित वायुमंडल के आंकड़े प्राप्त हों।
2: बिल्कुल, तुमने बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि। असल में हमारी ये समस्या आज दूर संवेदी तकनीक यानी रिमोट सेंसिंग द्वारा हल हो गई है। आज कई उपग्रह जिनमें पोलर सैटेलाइट यानी ध्रुवीय उपग्रह और जियोस्टेशनरी यानी भूस्थिर उपग्रह शामिल हैं, उनसे हमें पृथ्वी के एक विशाल क्षेत्र के आंकड़े प्राप्त होते हैं।
4: अच्छा
0: अंकल, आपकी टेबल पे ये इतने सारे मानचित्र, ये क्या है? हाँ अंकल, ऐसे मानचित्र तो मौसम का हाल बताने वाले कार्यक्रम में अक्सर दिखाई देते हैं।
2: मानव और सृष्टि, ये सिनॉप्टिक मानचित्र हैं। दिन के एक निश्चित समय में विभिन्न केंद्रों से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और वो एक विशेष केंद्र को भेज दिए जाते हैं।
4: फिर वहाँ पर उनको मानचित्र पर दर्शाया जाता है। भारत में 550 केंद्रों पर आंकड़े एकत्र होते हैं।
1: अच्छा, तब तो अंकल जैसे ही एक विशेष समय पर लिए गए आंकड़ों को मानचित्र पर दर्शाया जाता होगा, तुरंत हमें पूरे देश के मौसम का पता चल जाता होगा।
2: बिल्कुल। इतना ही नहीं, इन आंकड़ों के गहन अवलोकन तथा विश्लेषण से पिछले आंकड़ों व अनुभवों के आधार पर आने वाले मौसम का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। इन आंकड़ों को मानचित्र में मानक संकेतों द्वारा दिखाया जाता है।
0: ये मानक कौन

0: निर्धारित करता है?
1: ये मानक निर्धारित करता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यही संगठन आंकड़े एकत्र करने के उपकरणों व तरीकों आदि के मानक निर्धारित करता है।
2: अच्छा अंकल, जब इन सिनॉप्टिक मानचित्रों का विश्लेषण किया जाता है तो उससे हमें पूरे वायुमंडल का हाल तो मिल जाता है, पर आने वाले मौसम का पूर्वानुमान तो आकलन करने वाले वैज्ञानिकों के पूर्व अनुभव और उनकी कुशलता पर ही निर्भर करता होगा। उन्हें तो बहुत सारे सांख्यिकीय सूत्रों और समीकरणों को हल करना पड़ता होगा।
0: भैया, तब तो वो व्यक्ति गणित में बहुत होशियार होगा, है ना?
3: भाई, ये आंकड़े इतने अधिक होते हैं कि कई लोग लगातार दिन रात काम करें तो भी इनके सही नतीजे निकाल पाना संभव नहीं होगा।
0: तभी आपको सुपर कंप्यूटर की सहायता लेनी पड़ती है।
3: तुमने बिल्कुल सही कहा सृष्टि।
2: अंकल, क्या आज भी मौसम का पूर्वानुमान लगाना वैज्ञानिकों के कौशल और अनुभव पर ही निर्भर करता है?
1: नहीं भाई, आज तो मौसम का पूर्वानुमान लगाने के दो मुख्य तरीके हैं।
0: अंकल, पहला तो शायद वही यानी जलवायु के कारकों, पिछले अनुभवों पर आधारित अध्ययन और उसका सांख्यिकीय विश्लेषण। ये स्टैटिस्टिकल मॉडल यानी सांख्यिकीय मॉडलों द्वारा किया जाता है, है ना?
3: शाबाश सृष्टि। और दूसरा है वायुमंडल के सामान्य संचरण मॉडल्स।
0: ये क्या है अंकल?
3: भाई देखो, हमारा ये वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है और ये भौतिकी के सभी नियमों का पालन करता है, जैसे गति के नियम, ऊर्जा व द्रव्य के संरक्षण आदि के सिद्धांत।
2: अंकल, कहीं आप गणितीय मॉडल की बात तो नहीं कर रहे जो वायुमंडल में घट रही सभी प्राकृतिक घटनाओं को आधार मानकर तैयार किए जाते हैं?
3: बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक समझे विवेक। इसे अंग्रेजी में न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन विधि कहा जाता है।
1: अच्छा। या यूं कहें कि ये मॉडल मुख्यतः वायुमंडल के व्यवहार से संबंधित नियमों और अभिक्रियाओं का एक समूह है।
3: देखो भाई, इन सभी सिद्धांतों और उनकी आपसी परस्पर क्रियाओं व संबंधों को गणितीय सूत्रों और समीकरणों में बदल दिया जाता है, फिर विभिन्न कारकों का मान रखकर उनको सुलझाया जाता है। जैसे पहले आंकड़े क्या थे और अभी के क्या हैं और आने वाले समय में क्या होंगे आदि। इन प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आने वाले समय में वायुमंडल कैसे आचरण करेगा।
0: तब तो मेरे पास भी अगर सभी आंकड़े हो तो इस मॉडल के आधार पर और सुपर कंप्यूटर की सहायता से मैं भी मौसम का पूर्वानुमान लगा सकता हूँ।
3: मानव, ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वायुमंडल एक गतिशील इकाई है और फिर वायुमंडल को प्रभावित करने वाले सभी कारकों और उनकी आपसी प्रक्रिया का हमें पूरी तरह ज्ञान भी नहीं है।
1: दूसरे, हमारे पूर्वानुमान लगाने के सभी मॉडल कई मान्यताओं पर आधारित हैं, जैसे किसी कारक और उसके प्रभाव की गणना करके जो गुणांक निकला है वो सार्थक होगा, परंतु वायुमंडल गतिशील इकाई है, उसमें कब क्या किस कारण से बदलाव आ जाए क्या पता।
2: अंकल, तब तो ये कार्य बहुत कठिन होता होगा।
1: हाँ विवेक, परंतु इन मॉडलों से लघु अवधि के यानी आने वाले 48 घंटों के मौसम का जो पूर्वानुमान लगाया जा सकता है वो लगभग सही होता है।
0: यानी जैसे जैसे समय बढ़ेगा और वायुमंडल कैसे आचरण करेगा उसी के अनुपात में आने वाले पूर्वानुमान से ठीक ना होने की संभावना बढ़ती जाएगी।
3: बिल्कुल ठीक कहा तुमने सृष्टि। आज मौसम वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एक जटिल गतिशील इकाई वाले वायुमंडल को सही रूप में कैसे समझा जाए।
1: और तभी तो इन मॉडलों के आधार पर प्राप्त अगले 48 घंटों से अधिक के पूर्व सूचना को हम अनुमान कहते हैं।
2: अच्छा, तब तो अंकल मौसम की मध्यम अवधि जिसमें 3 हफ्ते की सूचना दी जाती है उसका पूर्वानुमान सटीकता से लगाना तो अब भी कठिन काम है।
3: बिल्कुल सही कहा विवेक। लघु अवधि के पूर्वानुमान विस्तार से बनाए जाते हैं, वैसे मध्यम अवधि में पूर्वानुमान नहीं बताए जाते। ये काम आज भी अंधेरी रात में काले कौवे को पकड़ने के समान है।
0: फिर अंकल, हम ये सारी मेहनत क्यों करते हैं?
3: ये भी सही सवाल है मानव। भाई, ये पूर्वानुमान सही भी तो उतरते हैं, कभी कभी अनुमान गलत हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मौसम का पूर्वानुमान लगाया ही ना जाए।
1: आज पूरे विश्व में लगभग सभी देशों के मौसम वैज्ञानिक लघु व मध्यम अवधि के पूर्वानुमान लगाने के अलावा आगामी वर्ष में होने वाली वर्षा, गर्मी और हिमपात का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। ये आने वाले मौसम का दीर्घकालीन अनुमान लगाना होता है, जैसे हम आने वाले मानसून का पूरा अनुमान लगाते हैं।
0: अच्छा। अंकल, हमारे देश में तो खेती मानसून पर ही निर्भर करती है। अगर उसका पूर्वानुमान लगा लिया जाए तो किसान फसलों को लगाने की योजना पहले से ही तैयार कर सकते हैं।
2: अंकल, हमारे देश में इस दीर्घ अवधि के मौसम का पूर्वानुमान मतलब कि आने वाले मानसून की भविष्यवाणी की जाती है।
3: बिल्कुल सही विवेक। सन 1986 से हर वर्ष मानसून का दीर्घकालीन पूर्वानुमान लगाया जाता है और खुशी की बात यह है कि अधिकतर ये परिणाम खरे उतरते हैं। इसके लिए हम आज एक 16 पैरामीटरों पर आधारित एक नए मॉडल का उपयोग कर रहे हैं।
2: अच्छा।
1: और इस मॉडल के अनुसार मानसून के पूर्वानुमान लगभग ठीक ही साबित हुए हैं।
2: अच्छा।
0: अंकल, आपका काम सचमुच बहुत कठिन है। मैं न केवल हमारे भारत में बल्कि पूरे विश्व के मौसम वैज्ञानिकों को सलाम करती हूँ जो दिन रात मेहनत करके हमें आने वाले मौसम के बारे में जानकारी देते हैं।
2: हाँ सृष्टि, सोचो ये मौसम की जानकारी हमारे देश के तटीय क्षेत्रों के लिए कितनी आवश्यक है।
4: तो क्या आने वाले समुद्री तूफान या चक्रवात की जानकारी भी हमारा मौसम विभाग ही देता है?
3: बिल्कुल मानव बेटा।
4: तब तो मैं भी अपने सभी वैज्ञानिकों को सलाम करता हूँ।
5: और मैं भी।
3: वाह क्या बात है।
2: हाँ, रसोई की खिड़की से कितनी अच्छी सुगंध आ रही है।
4: ये तो इमली की महक है। और हाँ, कल रात को तो मम्मी ने चावल और उड़द की दाल भिगोई थी, तब तो जरूर आज सांबर और डोसा बन रहा है।
6: हाँ भाई, डोसा ही बन रहा है।
2: देख मानव, आज तेरा अनुमान बिल्कुल ठीक निकला।
0: आज इसका अनुमान बिल्कुल ठीक इसलिए रहा क्योंकि इसने अच्छी तरह सारी जानकारियों को तोला और परखा।
7: अरे भाई, किसका अनुमान सही है? मेरा पूर्वानुमान है कि तुम सब के सब भूखे हो।
4: आपको कैसे पता?
6: अरे ये तो साफ साफ तुम्हारे चेहरों पर लिखा है।
4: मम्मी, तो क्या आप भी चेहरे पढ़कर अनुमान लगा सकती हो?
6: हाँ बच्चों, मौसम का अंदाजा तो मैं नहीं लगा सकती, पर तुम्हारे चेहरे देखकर तुम्हारी भूख का अंदाजा जरूर लगा सकती हूँ।
8: धरती मेरी धरती, अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 29वीं कड़ी सुन रहे थे, मौसम की भविष्यवाणी।

0: जय माता की। नवरात्रि के पांचवे दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मोर भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। जय माता की।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: अभियान।
1: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना।
2: पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियाँ टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु,
1: धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले,
2: कुपोषित
1: टीबी रोगी के साथ रहते हों,
2: मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग।
1: तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

नमस्कार, मैं श्रुति कीर्ति वर्मा, जिला मलेरिया अधिकारी गौतम बुद्ध नगर। आज मैं सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से जागरूक करने के लिए फाइलेरिया के विषय पर बात कर रही हूँ। फाइलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी है जिसे क्यूलेक्स मच्छर के काटने पर यह बीमारी फैलती है। इसके लिए जो है एक पैरासाइट जिम्मेदार होता है, निमेटोड है वो, बेसिकली वाउचेरिया ब्रोंकफ्टाई, जिसको ये कैरियर के रूप में मच्छर जो क्यूलेक्स काम करता है। और ये संक्रमित मच्छर अगर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो ये फाइलेरिया रोग हो जाता है। इसके बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर ये मच्छर किसी को काटता है तो पहली बात तो ये तुरंत इसके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, काफ़ी सालों के बाद में, लगभग 4 से 5 साल, कभी इससे भी ज़्यादा लंबा पीरियड लग जाता है, 7 ईयर्स भी कभी कभी देखने में आया है। तो काफ़ी सालों के बाद ये केसेस रिपोर्ट होते हैं। और हाथी पाँव, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि पैरों में सूजन, लिम्फ नोड्स से प्रभावित हो जाते हैं, एलिफेंटियासिस की तरह, इस तरह की

0: बीमारियां देखने में आती हैं। तो हमें करना ये है कि हमें अगर हम जितना बच सके मच्छरों से बचाव के लिए हमें कोशिश करनी होगी। जैसे डेंगू और मलेरिया का हम जागरूकता अभियान करते हैं, उसी तरह से हमें फाइलेरिया के लिए भी बचाव के लिए आप मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के आजकल मार्केट में कॉयल्स आते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं, नीम का तेल लगा सकते हैं। और बहुत अच्छा है कि कहीं भी अगर पानी स्टोर है तो अपने घरों के आसपास, अगर आप अपने घर में भी साफ सफाई रखते हैं, पानी कहीं भी जमा ना होने दें। ये हमें विशेष रूप से इस तरह की सावधानी लेकर के चलनी है। बेसिकली पाया ये जाता है कि जैसे बारिश स्टार्ट होती है और हमारा मलेरिया विभाग, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमारे जिला अधिकारी, हमारा पूरा प्रशासन और खास करके हमारा पूरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग लगातार अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं कि बारिश के बाद जो पानी इकट्ठा होता है सड़कों पर, घरों के आसपास, छत के ऊपर, कई बार कंटेनर्स, खास करके जो शहरी इलाके हैं उनमें बहुत छोटे छोटे जो हमारे स्थान होते हैं उनमें पानी भर जाता है, तो हमें ऐसे पानी को वहां से निकालना है। और अगर ऐसा पानी अगर हम नहीं निकाल सकते हैं तो वहां पर हमें एंटी लार्वा का छिड़काव भी करवाना है। तो नगर निगम, हमारे यहाँ नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, इन सब चीज़ों में सक्रिय रहते हैं। मलेरिया विभाग भी लगातार छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था भी करता है। और अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो इन जगहों पे हम डीजल और केरोसिन का यूज़ कर सकते हैं, जला हुआ मोबिल ऑयल ऑयल और जला हुआ डीजल का भी प्रयोग करके हम लार्वा को रोक सकते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि चाहे डेंगू का एडीज मच्छर हो, मलेरिया का एनाफिलीज हो या क्यूलेक्स हो, हमें इनकी ब्रीडिंग ही स्टॉप करके हम बीमारियों के संक्रमण को रोक सकते हैं। धन्यवाद।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

जय माता की। नवरात्रि के पांचवें दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मोर भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। जय माता की।

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुड़ जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे जानते हैं? पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंध से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे? शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की। नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की। जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है। कैसे जानते हैं? शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी।
3: सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। जय माता की। नवरात्रि के पांचवें दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मोर भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। जय माता की।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
5: Yeah. Gagan Kokri. Fateh.

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: डॉक्टर,

जय माता की। नवरात्रि के पांचवें दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। जय माता की।

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान, जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामो निशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

जय माता की। नवरात्रि के पांचवें दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मोर भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। जय माता की।

0: हो जाओ तैयार, आज मच्छरों पे होगा जम के वार।
1: हेलो, मैं हूँ रिपोर्टर तारा और आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान से।
2: हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ मच्छर और मैं और मेरी सेना फैलाते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार। मुझको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
3: वो तो देखा जाएगा मिस मच्छर, पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें काटती क्यों हो?
2: क्योंकि हमें अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और वो हमें मिलता है तुम्हारे खून से।
3: ये बात तो रिपोर्टर तारा को पता ही नहीं थी।
2: तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि हम एक बार में 100 से 400 अंडे तक देते हैं। हम अपनी पूरी सेना बना लेते हैं और तुम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हमसे सबसे ज्यादा खतरा है।
3: ये बात है तो हम बच्चे भी मच्छरों से ठुशुम ठुशुम लड़ने के लिए तैयार है।
2: क्या कहा तुमने?
3: Kids want to know मिस मच्छर कि अब तुम्हारा क्या प्लान है?
2: अब तुम्हारे घर और बाहर या आसपास जहाँ भी ठहरा हुआ पानी होगा, मैं वहाँ अपना घर बना लूंगी और बहुत सारे अंडे दूंगी, बहुत सारे अंडे दूंगी।
3: आहा, मिस मच्छर को नहीं पता कि तारा ने पानी जमा होने वाली हर जगह को पहले से ही साफ कर दिया है।

0: amigo Gadamon! Aonde me voa, voa!
1: चलो दोस्तों, बन जाओ टीम तारा। जहाँ भी जमाओ पानी, कर दो उसकी सफाई, फिर मच्छर और बीमारियों को बाय बाय।
2: टीम तारा है भैया।
3: अगली बार हम सीखेंगे मच्छरों से बचने के और उपाय।
1: फिलहाल रिपोर्टर तारा और अप्पा की ओर से
2: गुड बाय।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सके। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी यह है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड्स सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहां खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: सुनो सुनो सुनो, सबको तरसाने, मोहल्ले में आग लगाने, अपना मैजिक बरसाने आ गई है कोल्हापुर की बिजली। ओहो,

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: फ्रिज का

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनुशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
1: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

जय माता की। नवरात्रि के पांचवे दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मोर भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। जय माता की।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
4: शारदा। हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
5: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
4: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
5: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
4: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
5: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
4: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
5: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
4: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
6: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
7: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशारदा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
6: So, where are you? The world is here at Sharda University.
8: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

जय माता की। नवरात्रि के पांचवें दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मोर भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। जय माता की।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें

0: कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: राहे मोहब्बत में कुछ कड़ियां ऐसी होती है जो जुड़ने पर ही समझ में आती है। मुझे तुम्हारा आज भी इंतजार है और मुझे यकीन है कि तुम जरूर आओगी।

0: कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया।
1: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: जय माता की। नवरात्रि के पांचवें दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मोर भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। जय माता की।

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: एक तो है तूफान मेल, क्लास में सबसे आगे, खेल में रहती नंबर वन, दिमाग भी सरपट भागे। और एक है थकान मेल, थकी रहती हर दम, खेल में रहती पीछे वो, पढ़ाई में भी नंबर कम।
2: कहीं थकान मेल को अनीमिया तो नहीं? अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
1: जब से ली थकान मेल ने नियम से आयरन की गोली, चुस्ती फुर्ती आई उसमें तूफान मेल वो भी होली।
3: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ।
1: हाय, मैं रन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8
2: FM। जय माता की। नवरात्रि के पांचवे दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मोड़ भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। जय माता की।
3: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था, मुझे पूरा करना ही होगा।
4: लो माँ भी आ गई। माँ देखो, तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
3: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: हाँ माँ जी।
6: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
7: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
8: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो शारदा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचे। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा 90.8
4: एफएम। अरे भैया रामू।
5: हाँ भैया श्यामू।
4: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
5: अरे भैया श्यामू हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
4: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6000 रुपए में हो रही है।
5: अच्छा तो भैया लेके चल, अब ही चल।
4: तो अब ही चलो।
6: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
7: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है। इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: अरे सुनीता, कैसी है मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी, बस ठीक है।
1: साफ सफाई का ध्यान रख रही हो?
2: जी दीदी, जैसा आपने बोला था, हर रविवार साफ सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं। जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा देखते हैं, तुरंत साफ करते हैं, जैसे पानी का ड्रम, कूलर, फ्रिज की ट्रे
3: और आसपास कहीं भी टायर, नारियल, खाली बर्तन या किसी भी चीज में पानी जमा होने नहीं देते। दीदी
1: बहुत बढ़िया।
4: ओ

0: घरों पर भारी।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं।

0: जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in.
1: The world is here.
2: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है. ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है. इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज. और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री. इंडिया वर्सेस टीबी. टीबी हारेगा, देश जीतेगा.
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा. 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा.
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स. मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है.
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा.
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं.
4: हाँ पापा बिल्कुल.
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर.